हे कृपाल माप कितने आई बारक ज्यों प्रसारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काद लिए माँ पौजलते अपनी नदर निहाल रहाओ जाके सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइए सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइए भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाके छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाके अंत काल प्रभ पैसाई इत उतराखन हारे।

मन की और किसके आप सुनाये विण नामे सब जग दोराया नाम मिले सुख पाये। क्या कहिए किस आप सुनाये जे कहना सो प्रभु जी पास सब किस की ता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देह वड्याई ता तेरी वड्याई इत उत तुझे ते आओ नानक के प्रभु सदा।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुम्हारी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकी

वहाँ कोरते बाँ पकड़ गुर काट लिए, निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पे जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार है जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा मोह मलन नींद के छुट

काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै घनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी।

निर्मल बरन बन्योरी, महामंत्र गुर हृदय बस्यो, अचरज नाम सुन्योरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख।

प्रभ आप सिवार सवारन हार रहाओ दूजा आसा मेला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली है दूर चुका नहीं हो रहा सकी सहेरी परम दया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट कौन प्रेय सेज तरी कौन कदम ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनज बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सोहाग नानक।

बहुत सिहाला सगल चरण की इहु मन राला नानक जन गुरु पूरा पाया अंतर बार एक दिखाया। आशा मैला कन्या पावत रलिया जो बन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया सेज सुख लिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक्षतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन।

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जा को मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा, तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जा के हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाय, यो स्थान गुरु ते पाये, राव दूजा आसा मेला पन्नवा, कर में सुख बार फुल सूखा, हर सिमरत सगल बिना से दुखा, सगल सुख जा तू चित

डेरा हुक्म बूझे सोई परवान साथ सब जाता निशान गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आशा मैला पंजवा जहाँ पठावो तह तह जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गोसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अगा।

सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहु न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला पन्यवा, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

सगल सामग्री जाके सूत पर होई कट कट अंतर रहया सोई ओ पत पर लो खिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण करावन अंतर जा।

किलबिक बिनासे दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ। प्रभु के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुरु दिया कृष्ण बुजी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाई।

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दया।

इत उत कतैन डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेप न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन कह अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहा व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

रहाओ मिट गया दुख बिसारी चिंता फल पाया जब सतगुर मंता सोई सत सत है सोए सिमर सिमर रख कंठ करोए कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आशा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा शरण गई प्रभु गुणी गहेरा राव तू मेरा जीवन तू आधार तुझे पेक बिग सह कोलार तू मेरी गत पथ तू परवान तू समरथ मैं तेरा तान अनदिन जपो नाम गुण तास नानक की प्रभु पै अरदास आसा मेला पन्यवा रोवन हारे झूठ कमाना हस हस सोग करत बेगाना को मुआ का कह कर गावन को रोवे को हस हस पावन रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना पहुँचना मुका फिर पछताना प्रयोग गुण में वर्त संसारा नरक सुरग फिर अवतारा कहो नानक जो लाया नाम सफल जन्म का।

सारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोहिला दी अंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आशा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कम कर नस गए विचारे उचित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आशा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद तली बनी जा के गृह सब किछ है पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ नाम दृढ़ाया साध

तो जन पूरन रहे अघाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

तेरी देख चलत मन पै दिलासा नानक दास तेरा परवासा आसा महला पंजवा अन दिन मूसा लाज टुकाई गिरत कूप में खाए मिठाई सोचत साचत रैन बिहानी अनक रंग माया के चितवत कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ द्रुम की छाया नहीं चल गृह बांधिया काल के फांस सकत सर सांधिया बालू किनारा तरंग मुख आया सोथान मूड नहीं चल कर पाया साध संग जप्यो हर राय नानक जीवे हर गुण गाए आसा मेला पंजवा दो पुके नावा उनके संग तू करती केल उनके संग हम तुम संग मेल उनके संग तुम सब को लोरे उस बिना को मुख नहीं जोरे ते बैरागी कहाँ समाए।

उनके संग तू रखी पलोल, ओस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत। उनके संग तेरी सब विथाटी, ओस बिना तू हुई है माटी। ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए। जोड़ बिछोड़े नाम खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

ना हमको तृष्णा, जहाँ ओ निर्मल ता हम जचना। हम किछ नाही एके ओही, आगे पाछे को सोई। नानक गुरु खोए परम पंगा, हम ओए मिल होए इकरंगा। आसा महला पंजवा, अनेक पांच कर सेवा करिए। जियो प्राण तन आगे तरिए, पानी पखा करो तज अभिमान। अनेक बार जाइए कुर्बान, सरई सुहागण जो प्रभु पाई।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट।

दे। अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन आधार, होए रहे सबकी पगछार, संत रह सुनो।

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरी है, नानक दर्श किया।

पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करें है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंद्र।

पुरख विधाते हैं, बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख लादे कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जात कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। कर्म राजा बिस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणी है कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे थाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद। कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्श। राग आसा में

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोह कुटुंब दिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाही। नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्रिय आशा महला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहिना। कारण करना कारण करना एक है सोहिना। संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना। आशा मेला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला। रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगे अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला। आशा मेला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे। रहाओ नाम पदार्थ।

कमाया गुण रस रस गावे एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आशा महला पंजवा एक सिमर मन मानी रहाओ नाम ते आवो हृदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये सगले दुख जाही जीवन को दाता पुरख विधाता नानक कट कट आही आसा मेला पंजवा हर बिसरत सो

माए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संयम कर थाके नानक साध शरण प्रभ संग वसै आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा दान सगल गैर वजह परया दीवान लेखे ना परया जिह कारज रहे ओला सोए कामना करया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर तगत नानक पूरन भाग आसा मैला पंजवा हर्ष शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु पै निरपै खिनहु।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, हम स्यों तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सबको तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताको सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बड़ पा गया।

उत्तर अवघट सरवर नावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सेवा सुरत विपूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार

उजड़ पर मैं राह न पाई, बिन बूझे को थाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पै उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरणा हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुद नाल शब्द मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरै अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजै बिन सह पत खोए, गुरमुख होवै बूजै सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

मुए को रोवे दुख होए, सो रोवे जिस वेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सोए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हों बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै सरना, निरपौ आप निरंतर ज्योत, बिन नावे सूतक जग छोत, दुर्मत बिन सह क्या कह रोत, जन्म मुए बिन भगत सरोत, मुए को सच रोवे मीत, त्रै गुण रोवे नीता नीत, दुख सुख पर हर सहज सुचीत, तन मन सोपो कृष्ण प्रीत, पीतर एक अनेक असंख, कर्म कर्म बहु संख असंख, दिन पै पगति जन्म बिरंथ, हर गुण गावे मिल परमारंथ, आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप, श्रेष्ठ उपाय ज्योति तू जात, शब्द विचार मिलन नहीं प्रात, सूतक अगन पथे जग खाए, सूतक जल थल सभी थाए, नानक सूतक जन्म मरी जय, गुरु प्रसाद।

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अकूट पंच तीन नव चार समावे तरण जगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख हुए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिक्का माता जग स्यो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण को वे।

में मन झूठ अनीते, कहां चलो मन रहो करे, गुरुमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे। रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा, लग लोभ अहंकार सुपीरा, राम नाम दिन क्यों मन तीरा, अंतर नावन साच पछाणे, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने, हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर शेर देखो प्रभ नैनी राव, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत कलक

था संचय तन जाए बिन हर भगत न कभी थाए बंधन वेद बाद अंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम शरणाई सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तिन गल सिलका पाया तुतन मोक्सरिया तन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे दे।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठापे, जर वंड देवे पाई। राव कहां सो करदर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान संगोली हरमा।

जिसनो आप खुआए करता खुश ले चंग्याई, कोई हु पीर वर्ज रहाए जमीर सुनिया काया,

रामे तेग वगाई, ओनी तुपक तावन चलाई, ओनी हस्त चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी ठकुरानी, इकना पेरण।

जाए रुआये हुक्मी हुक्म चलाए विगसे नानक लिखिया पाये एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी मैला पहला कर अठवां अस्त।

कोई, पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

जे चलदा लै चलिया किछ संपे नाले, तां तां संचो देख के बूझो बिचारे, वणज करो मकसूद लै हो मत पछो तावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत परावो, धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो, तां वापा

निरंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जानी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें।

गुरमुख नाम त्याई है मन मंदर पी जय रहा कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाई है परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुग तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारी है हर्षो बने आई कल्लर खेती बीजी है क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाही है सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर सैल

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है। लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है। मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही। नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला क्या जंगल टूटी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है। गुर की कार कमाए महल पछाणी है। रहाओ आप मिलावे सच तामन पावे।

पाले, गुरुमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले, जम्मन मरना आखी है तिन करते किया, आप गवाया मर रहे फिर मरना किया, साई कार कमावनी तुर्की फुरमाई, जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई, रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई, नानक साहिब मन वसै।

अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साके पर थाई, गुरबिन किने न पायो केती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी, सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाइए।

मेरे छा तुर हाथ वड्याईया पाने पथ पाईए साचो दूर न जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपके हरे वेखे वड्याई गुरमुख हुए निहार।

ले अगन जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई, औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मैला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जां कुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई है, लाहा हर गुण गाए मिले।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाये कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी। जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे हो।

देता साच वखानी जा को सच बुझावे अपना सहजे नाम समानी आसा मेरा तीजा सतगुरु हमरा परम गवाया हर नाम।

गुर सेवा से सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए, नानक साथ कह विचार, हर का नाम रखो।

कर कृपा नाम मन वसाए, इहो सिर दी जय आप गवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा। गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परख सलाह है अंतर शब्द अपारा। गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिए मन निर्मल होई। सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। पूरा सतगुर ता मिले जा नजर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई। अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए। आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई। अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, बिन सतगुर पाई न जाए। पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई। आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई। मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा। आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा। भगत भी ओना नो बख्शियन अंतर।

सोई, कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वस ना आवनी, नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा। करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही, गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही, सतगुर ते हर पाई है पाई, अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई। रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा, पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई, नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई, पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई, कर दर छोड़े अपना पर कर चूठा जाई, चोरे वांगू पकड़िए बिन नामे चोटा खाई, जिन्नी कर जाता अपना से सुखिए भाई, अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई, नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आसा महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई, हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ही है बिखिया माए उदासा, रहाओ बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई, नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा, नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई, नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई, बिन नामे कोई ना मनिए मनमुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई, नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई, जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किस नाम।

का बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी ते तिसे ना जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे अवगुण।

नानक नामे लाए सवारियन सब दे ले मिलाए आसा मेला तीजा सब नामे नो लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नामे सब दुख है सुख तिस जिस

सच रतिया सुहागणी जिना गुर कै शब्द सिगार। कर ही सो फिर पाया सच्चे शब्द विचार, अवगण गुणी बखसाया हर सो लिव लाई, हर वर पाया कामणी गुर मेल मिलाई। रहाओ इक फिर हदूर ना जानवी दूजे परम पुलाए, क्यों पायन दोहागणी दुखी रहन विहाए। जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए, अंदिन सेवे सहज सो सच्चे माही समाए। दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए, फिर ना जानन अपना सुन्नी।

सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अन दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ ना पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक सत्यों लिव लाए, नानक जे सुख लो।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पगती दे।

जिन्ना फिर रावया अपना तिना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रहे विचो आप गवाए तन मन शीतल मुख उजले फिर कै पाए प्यार से सुखाली फिर

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए, रहाओ इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करे सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सह लिया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाओ। दर्शन की प्यास कणी चितवत अनेक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार। मन परदेसी आया मिलियो साध के संग

तेरे नाम से हो सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है नहीं चल हर को ना हो कर मित्राई साध चो नहीं चल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंद।

तारे दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बीस प्यारे सो क्यों तजना जाए इहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिगार बिखिया के फीके।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है।

पढ़िया पंडित आप थिया छछै छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम होआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया जज्जै जान मंगत जन जाचे लख चौरासी तीक पवया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं।

टट्टे तंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मोहत के उठ चलना, जुए जन्म ना हारो अपना, पाज पड़ो तुम हर सरना, ठट्ठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होआ सो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, शर्म निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

जाने। गुरुमुख आखे गुरुमुख बूझे, गुरुमुख एको जाने। रारे रव रहा सब अंतर, जेते किए जनता जंत उपाय।

अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करें क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दाता।

जम पाकड़िया बब्बे बूजे नाई मूड़े परम पुले तेरा जन्म गया अणहोंदा ना उतरायो पांदा अवरा का पार।

ममे मत हिरलई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रोग पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कक्के काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुणे तू बहुत पुकारे।

तन पिरै मेला होए स्वामी, आप प्रभ कृपा करे, सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन उमाहो, मुंद सहज सलो नड़िए, एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर भावे, प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै।

जब तप कर कर संयम था कि हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर तित रत्न कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिख्या।

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछा।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम, अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम। अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चै प्यारो, आवन जावन ठाक रहा है गुरमुख तत् विचारो। साजन मीत सुजान सखा तू सच मिले वड्याई, नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग।

विदाता दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे, कोट कोटंतर पापा केरे एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजन हार जियो, जिन एक मन त्याया

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेर ना आवे जमन मरण तिना काचू का जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन

गुरमत हर त्यावे, नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम फुली, हर वर न पाए राम। कामन गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी, अवगुणवंती चूरे। अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया, ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए। नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया, गुर मेल मिलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे, तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई, सहजे हर रस चाखिया। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुवाखिया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई। नानक बिन भगती जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई। सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

भगत पाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा, सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी, आम दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा, तह तह हर तेरे नाले, मन स्याणप छोड़िए गुर का शब्द समाले, साथ तेरे सो सो सदा है, एक दिन हर नाम समाले। जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंक परम पद पावे, साचे नाल तेरा दंड लागे, गुरमुख सदा संभाले। त्यों कहे नानक जय मन तू तावदा, तै हर तेरे सदा नाले। सतगुर मिले तावत थमया, निज कर वसिया आए, नाम विहाजे नाम लए, नाम रहे समाए। तावत थमया सतगुर मिले दसवां द्वार पाया, तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे, जित शब्द जगत थम रहाया। तह अनेक वाजे सदा आनंद है, सच्चे रहा समाए। त्यों कहे नानक सतगुरु मिले तावत थमया, निज कर वसिया आए। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाने, मरण जीवन की सोजी।

का दुख गवाया, अधिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी।

नानक मन तन अर्प गुर आ गए जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडार।

जगत निस्तारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहे था गुरमुख पार लंघाई, हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर परचय गुर परचय।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम सियाए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया ते मन मुख मूड अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूड पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया, मां बिकम जम पंस दुहेला कालू खत्म हो अंधियारा, नानक गुरुमुख।

दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जप

हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख विनाशन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जपते सुनते दुख जाए जियो, हर हर नाम जपिए।

सुर लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, प्रमचू का आमन जान जियो।

अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगे पावे मान जियो, सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे कर्म त्यान जियो, तेता युग आया अंतर जो

कल युग हर किया पग त्रै किया पग चौथा चिकै टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर नाम।

आसरे में खिन खिन पग तो में जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख पागा रत्ती चारे गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नामा कंठ तारे सब एक दृष्ट समत कर देखे सब आत्म राम पहचान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन भाई हर रस निरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर न कोई जियो अवर न कोई हर

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ, गुर करे पसाओ।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया निच आप लुकाया, मत जम पकड़े ले जाए जियो, हर अंतर बा

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पै दे जान जियो हर दरगे पै दे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर नामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखा।

मंत्र दृढ़ाए, हर रस रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया, मुआ जीवाया, फिर बाहुर मरण ना होई, हर हर नाम अमर

कार्य सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सो कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नगनि दे नौनि दे मेरे कर में आई राम सब किच मैं सब किच पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखारा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामर्थ मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता ऐसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते, जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे, माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है, हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा, चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा। मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे, ताठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे। पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला, आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा, हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात, नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दुध न्याई रीत अब दुध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे, खिन नाहे तरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये। जह दुख सुनिए जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे, कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना धीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो। हर प्रीत करी जय इह मन दीजे अपलाये चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी। गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा, कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा। मन ऐसा निहो करे हो चकवी सूसने हो चितवे आस पणी, कल दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया। मन हर रंग कीजिए हर प्रीत करी जय मान न कीजे, इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो किती है, कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरण पतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय, मन लाल दी जय पोक करी जय। हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया, अत मिलियो मित्र चिराने। गुर थी आसाखी ता जिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे, कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय। ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे, नानक पेटे साध जब हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना, कर गवन बसुदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते, दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विष्णु अवतार शंकर जटातार, चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व ते आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जा को सेवे
लक्ष्मी अनक पांच गुपत प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूरत आवे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खट शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिये संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा महला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक पयम पै चरण जमपे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर बिना

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नानक पयम पै चरण जम पै पावन पथित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुत तरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तय तय प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये पवित कार्य सारया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारया चमत्कार प्रगास देह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै पवित वचल हर बिद आप बनाया आशा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूरन सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप से आगी है तज आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूरन आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्याग गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर

छंते। मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो, बिनो करो कर जोर हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया। कतहु न तावो शरण पावो, करुणा में प्रभ कर मया। समरथ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो। कर जोर नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच, सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच। मल परम कर्म अहं ममता, मरण चीत न आवे। बनता विनोद आनंद माया, अज्ञान तालप तावे। खिसै जोबन बलै जरुआ, दिन निहारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी, शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन। प्रमत पार अगमत आयो, बहु परदेश पायो। अब ओट तारी प्रम मुरारी, सर्व सुख हर नायो। राख महारे प्रभ प्यारे, मुझते कछु न हुआ होन। सुख सहज आनंद नानक, कृपा तेरी तय पौन। नाम तारी उधारे पगत संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी, मन निधाना पावे। हर रंग राते प्रभ विधाते, राम के गुण गावे। बसुद कागद बन राज कलमा, लिखन को जे होए पवन। बेअंत अंत न जाए पाया, गही नानक चरण शरण। आशा महला पंजवा, पुरख पते भगवान ताकी शरण गही। निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन, इष्ट बंधक जानिया। गय कंठ लाया गुर मिलाया, जस विमल संत वखाणिया। बेअंत गुण अनेक महिमा, कीमत कछु न जाए कही। प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर, ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए। गत परम मोह विकार बिन से, जोन आवन सब रहे। अगन सागर तय शीतल, साध अंचल गह रहे। गोविंद गोपाल दयाल समरथ, बोल साधु हर जय जय। नानक नाम त्याय पूरन, साध संग पाई परम गते। जय देखो तय संग एको रव रया, पट पट वासी आप विरले किने लया। जय कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या। आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला, गोविंद गुण निर्जन कहा। सिमर स्वामी अंतर जामी, हर एक नानक राव रया। जिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे। चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे। दुख पूख दरिद्र नाथे, प्रगट मग दिखाया। मिल साध संगे नाम रंगे, मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन चुपुन्नी, कुल संगुआ सब तरे। दिन श्रेण आनंद अंदिन, सिमरंत नानक हर हरे। आशा मैला पंजवा, छंत कर सतवा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद श्लोक। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग। नानक नाम न विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत छंत। पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अंजनो। चरण कमल ध्यान हृदय, प्रभ विसरना ही किनो। तब मान मोह विकार मन का, कलमला दुख जारे। बिन हंस नानक सदा जागे, हर दास संत प्यारे। मेरी सेजड़िये अडंबर बनिया, मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी, चाव मंगल रस भरे। अंग संग लागे दुख पागे, प्राण मन तन सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ त्याई, संजोग सा शुभ गणिया। बिन हंत नानक मिले श्री पार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने। गुण गुण गुप्त अपार करते, निगम अंत न पावे। भगत पाए ते आए स्वामी, सदा हर गुण गावे। सगल गुण सो ज्ञान पूरन, आपने प्रभ पानी। बिन हंस नानक रंग राती,
प्रेम सहज समाने, सुख सोए लड़े हर गावन लागे, साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहसे, प्रभ आप कृपा सारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया, शुभ दिन से आए सहज पाए, सगल निध प्रभ पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, सदा हर जन पागे। आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया, तैं क्या चिर लाया, मोलत कुनड़िया कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया, करें पाप अमित्या, तन पसम तेरी जमे हेरी, काल बकड़े जितया,

मन शांत आई बजी बधाई ने अंत जाई पाया बिन वंश नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण जय जय धर्म करे दूत पहे पलायन परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे पर अनग्रो राख ली ने मोह ममता सब तजे गय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण बिन वंश नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण निज सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा बिन वंश नाम सर।

साथ है। संग देखे करणहारा काए पाप कमाई है, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते। बलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किश दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, मिल साध संगे पदन संगे कुल समूह तारी है। शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नानक सदा तजी है प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, कूड़ कपट कमाऊं दड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सरनाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर संदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक दिन कछ

बिनवंत नानक वद पाग पाई है सूख सहज समाही। आसा मेला पंजवा चंक पर अठवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीक्षण मद विपरीत हे अवध अकाल जाप गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात सब बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात। मीना जलहीन हे ओहो बिचरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान हे मंडुबुद गोपाल ज्ञान हे जाचिक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा सेज सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहे हान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोकाना श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राजा की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नाम गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सत्यायन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कड लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आखरे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिजमा लिया थाउ ना पायन कूड़िया मौका ले दो जुकचा लिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख है हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत

पाप कढ़े कोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, कूड़ा लाल छड़ी है होए इक मन अलग से आई है। फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार करमी तर्म करे गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ बहे कर बार सबको पूरा आपे हो वह कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पप वै चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वेखी जगत उपाया इकना नो तू मेल लह इका को तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।

कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर नया तू सच्चा साहिब सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भेयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा

दुर्बिन ज्ञान न होए पौड़ी। परवा हो वह गुनेगा ताऊ मी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो ना उपचारी है। ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गया हारी है, पढ़िया अत्यो मिया विचार गए विचारी है। मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझेता है। सब जुग रथ संतोख का कर्म अगै रथवाओ, त्रेते रथ जतै का जोर अगै रथवाओ। द्वापर रथ कपै का सत अगै रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अगै रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आठ है साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा परपूर। राम नाम देवा मैं सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

दाहिल हो गया। नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठान ही अमल किया। चारे गेद हुए सचियार पड़े गुणे तीन चार विचार। पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी। सदगुरु विट्टों वारिया जित मिले खसम समा लिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया।

का कड़ी कार ऊपर आल बैठे पूड़ियार मत बिटे वे मत बिटे यो अन असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन झूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़े आईया आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेदनी सुरे सुरतंदे लाएंदा नगर पट्टी जे करे सुल्ताना का उतर आएगा दर मंगन पिख ना पाएगा। श्लोक महला पहला जे मुहा का धर्म है कर्म ही पितरी दे अग्गे वस्त

काटके पाए, फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला। अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल, असर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल। जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार, तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना। दरवाज ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए, दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल। दार ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल।

परमात साहेब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित पौ खसम न जाए, नान सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाय पौड़ी, नानक अंत न जापनी हर ताके पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चले बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी।

गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कवन काज जग उपजय बिन सह कहो मुहे समझाया देव करो दया मुहे मार्ग लाओ।

ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग ओए हर के संत ना आखिया।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम,

लुंजत मुंजत मोन जता कर अंक कौ मरना तांके सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम जो तिक जाने बहु बहु ब्या करना पंत मंत्र सब औखद जाने अंत तौ मरना राज भोग अर छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तौ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इयो रामे जंपो मेट जन्म मरना आशा फील रबाबी बल्द पखावजे कौआ ताल बजावे पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे राजा राम तक

पर्वत छाया कछुआ कह अंगार बेलोरो लूकी शब्द सुनाया आशा बटुआ एक बेहतर आधारी एक ओज से द्वारा।

दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी तें कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े है, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी।

रे गौरे तुम करी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई राव, काकी मात पिता थो काको, कवन पुरुष की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे, हंस के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कह पाई, इस बंदे से जुल्म हो।

एक चुके संत सुन अंग अंत नहीं पाया वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे तक न जाए रहाओ तन कर मटकी मन माए बिलोई इस मटकी में सबक सिंजोई हर का बिलोवना

हार होगनहार हो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष तक तपना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे। लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछुए लह न गयो, आई तलब गो

बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। सू में तन राशन को दिया, मुग्ध कहे तन मेरा, जम कर दंड मुंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पग सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फास तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे। कलमा पिस्त न होई सत्तर का बाकत ही पीतर, जेकर जाने कोई निवाज सोई जो न्याओ विचारे। कलमा अकल है जाने,

की आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्तरी की माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा गगन नगर।

सहवाता थाके पंच दूत सब तस्तर आप अपने प्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दसह बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्याव जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी।

बल अबल क्या इस्ते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कह हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेह रावण का खबर न पाई, क्या मांगो किछ फिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया नवाती, चंद सूरज जाके तपतर सोई, वैसंतर जाके कपड़े तोई, गुरमत रामे नाम बसाई, अस्थिर रह न कटू जाई। कह कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त न होई। आशा पहला

अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राख्या, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरव जन्म कर्म पूम बीज नहीं बोया, रहाओ बारिक ते बिर्ग पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकरे, तबहे काहे रोया, जीवने की आस तरह जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हाँ, पांचों तत बराती, राम राय स्यों पावर ले हो, आपन ते रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा रहाओ, नाभि कमल में बेदी रचने, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबड़ पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना, आशा, सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो

कासों कहो रे रहाओ बाप सावका करे लड़ाई माया सदमतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो ना प्यारी कह कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया आशा हम कर सूत तने।

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू न पार उतार चरायो कैसे खसमा मारे तू बामन मैं काशीक दुल्हा बुजो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे कूपत राजे।

आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब फुन रूप न होई ताजा तन साज सब खाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरी।

आ गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पै राम प्रसादा। आशा रोजा करे मनावे।

तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने ना ही कछ बौरे, जो दिल में खबर न होई।

रहा कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंदरावा बिटवे राम रमौआ लावा रहाओ कह कबीर सुनो मेरी।

मरम ना जाना, सब जग अंत आयो ताना रहाओ, जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरियो ताना, तरन आकाश की करघ है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई, पाई जोर बात इक कीनी, तह कांति मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना, कहत कबीर कारग है तोरी, सूत है सूत मिलाए कोरी, आशा अंतर मैल जे तीर्थ न वे, किस वैकुंठ न जाना, लोक पति ने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाई, हर का संत मरे हाड़म बैठा सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कह कबीर नरक।

का। मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी, मत मत काटो जम की फांसी, कहां करो जाती चह करो पाती, राम को नाम।

ज्ञान मांडे काहे को की जय ध्यान जपना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने ऐसे ही ठग देओ बखाने नामी के स्वामी लाए ले चगरा राम रसायन पियो रे।

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जान है ताकि के तक आस मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ।

काल पास अदग लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुरु ज्ञान भगत।

रविदास पने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल, हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है मादो जैसे मधु मखीरा। जाती ओछा पाती ओछा।

चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन हो

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघानी मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत समा।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय बख्शिया पार ब्रह्म भगता में गनिया।

काकिन कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां रहाओ। जे जाना मर जाइए तुम ना आइए, ऊंची दुनिया लग ना आप वंजाइए।

चौक दे कर पहला तेरा नाम करी चरनाथिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जेर लै कट अंतर पूजा होए पूजा की चे नाम त्याय बिन नावे पूज न होए रहाओ बाहर दे पखालिए जे मन तोवे कोए झूठ लह जियो मांजिए मोख पयाना होए पशु मिले चंगियाइया।

सारे संभाले जो देव है सो खावना कहो नानक साचा है। गुजरी महला पहला नाभि कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पढ़े मुख कंठ सवार ताको अंत ना जाई लखना

कर रहाओ। रव सस दीपक जा के त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरमुख हो सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुर चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै, दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेवियै मना, जित सेवियै गोविंद प्रीत उपजै, अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो वही, जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप से ती आप खाया, तामन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समयी। दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई है, जे लोचे सब कोय, पूरे की पाल विच्चों निकले, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे, सतगुरु का पाना चित करे, सतगुरु आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो। राव हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साथ अंत होए सखाई। हर दिन होर रास कूड़ी है, चल दिया नाल न जाई, हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कर।

सहजी रह समाए रहाओ। जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैरागे ते हर पाए हर सुन रह समाए। शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए, इहो कारण करता करे ज्योति ज्योत समाए। गुजरी महला तीजा राम राम सब को कहे, कहे राम न होए। गुर प्रसादी राम मन वसे ता फल पावे कोए। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हर किस कदे ना भी।

ही अंत गया पछताए। शिव मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अस्त तीरथ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुकुम बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन शिक्षा छे। दूजे पाए जेता पढ़े परत गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कथनी बदनी जे करे मनमुख बूझ न हो।

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो किस पार।

गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवड़ पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह है। जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पाजहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वडे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सरदार।

उत्तम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहा गुरमुख वड पागे वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुष।

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी मैला चौथा। हो दयाल मेरा मन लावो, है अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई राव। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव डे आई, तन तन सबा।

जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया वड पागी गुरु के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सब संगत गुरु की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभु तारे हर आपके गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुणबाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरखे जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम के आवे पाई रे मोको कोई आयु मिले हर नाम दृढ़ आवे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभु की हर कथा सुनावे रहाओ नीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सोचित लावे अमृत वचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पागहीन मोए मर जावे अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर क्यावे तू दाता जी सब तेरे।

था कर की जा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कौशन बंद हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई, विच्चे दुरुस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बने आई, तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाए, सो हम करें जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, तेजन नानक राम नाम लिवलाए।

तू पाए ता कारज आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया, सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाओ। शास्त्र वेद सिमरत सब सो दे सब एका बात पुकारी बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर स्नाना ब्रह्म आए थर सारी अनक सोच करें दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेष बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमक न बिसरो।

अमृत पाई आश्चर्य हर प्रकार खावो खर्चो टोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना।

कापड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन है हो हर चरणा हो कौला नानक दास।

कहाओ। देश कमावन तंजोरन की मनसा बीचे निकसे सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिदास।

जोग जुगत निशाने पूरन पूर रहो सर्व थाई आन न कतहु जाता काट काट अंतर सर्व निरंतर रंग रवियो रंग राता।

तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंग सेन साथ, तित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचित फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण न बूझी। सिमरत नाम कोट उजियारा, बस अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वार आया, ऐ पंजन हर राया। साध के चरण तूर जन बांचे, सुख नानक हो पाया। गुजरी मेला पंजवा, पंच पदा कर दूजा इको अंकार।

ए सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदव सुत पाई, संग बनता रच हसया, जब अंति

दुख दिन से सुख किया निवासा, कृष्णा जलन बुझाई, नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, अरे कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे, रहाओ।

सारो वर्ण जात को पूछे नाही बासे चरण रवारो ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुध पाई हर कीर्तन आधारो नाम देव त्रिलोचन।

सुई ब्रंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहो है एको जत्र कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु नायो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वछल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जप तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अभय दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आरा दो प्यारो निमख ना की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रे।

मुन योगी शास्त्र गे कहावते सब कीने बस अपने ही। तीन देव अर कोर ते पीसा तिनकी हैरत कछ न रही। बलवंत व्याप रही सब मही।

कहो नानक तिस गुर बलिहारे, जिन सबका किया उधार गुजरी मैला पंजवा। मात पिता पाई सुत बंदत तिनका बल है थोरा, अनित रंग माया के पेखे किछ साथ न चाले पूरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहा उहा तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श।

मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभु को सदा सलाहे।

और चुत चुत वो हर रसन अरादो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, दिनों करो कर जोर, नाम जपे नानक दास।

कमल संगराच सगल जीव जा को आराध है ताहू को तू चाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे तिस कहा करे संसार। गुजरी महला पंजवा जल की पैज सवारी आप हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार मिटी ब्याज सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करते गुरु पूरे की वडियाई अब चलनी करी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई। गुजरी महला पंजवा कबहू हर सो चीत ना लायो।

कपटे अनेक जुगत कर कायो विसरत प्रभु के ते दुख गनिए महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी मैला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत।

साध संग उधार एहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रभ दयाकारी बक्ष लीने आप सर्व सुख हर नाम दिया।

सास सास ना बिसर कब हूँ ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनित रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी मैला पंजवा अहं बुद्ध बहु सजन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांसी है जन तूर कोट जन्म के लह पातित गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते मद आशा कुकरी विकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काती है जमजाल काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागमन प्रभ

निवारे, मिले हर जन संत सर्व विद प्रम के पुकारे, कत नाई छोट हर चरण शरण अपार प्रभ के।

परमा निर्मल गुण प्रभु गाए, गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी, वड्डे पाग लागी, कवल प्रगास पए साध संगे, दुर्मत बुद्ध त्यागी, आठ

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिष्माया मन तत अवगत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तचियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभु दाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जब तप संयम सच आधार हर हर नाम दिए सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ सुन समाज रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार ना पद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना ज्योत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दें दे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंत

पिलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताए बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ न जाए। है जी काल सदा सिर ऊपर।

तोग बिजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। सहजी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अधुआर आई। अनदे मूले नाथ सिर नाथा सतगुरु मेल मिलाई। सहजी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमण चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल

पज शरण सतगुर उबरै हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ सरणी लब लोभ।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिनकेरा आप तरे कुलतारी मनमुख दुबदा।

निंदक निंदा कर मल तोवे, ओ मल पख माया तारी, संत जना की निंदा व्यापे, ना उर्वार न पारी। यो परपंच खेल किया सब करते, हर करते सब कल तारी, हर एक को सूत वरते जुग अंतर, सूत खिंचे एकंकारी। रसन रसन रस गावे हर गुण, रसना हर रस तारी, नानक हर बिन अवर न मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। गुजरी मैला पंजवा कर दू जा।

अब आ गया हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी मेला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निध सफल स्वामी सेव।

तहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिए रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पे गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंसै रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नान।

एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिध नाहे, गुर के पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसे गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर ना कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन

ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए। अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच। नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया। हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सब सुनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायुन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर पावे। सतगुर

आप वड्याई देवे पौड़ी, माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है।

सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हों मैं खोई हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वसया मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय किते न पाये हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर ना।

छड जाए, केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चलदिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हौ ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए महला तीजा। एको ने चल नाम तन होर तन आवे जाए, इस तन को तस्कर जोए न सके ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए से

जिना नाम तन खटियाए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाईए नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना रलन ओना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे, गुरमुख तरे जप हर नाओ। पौड़ी। बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवे जाए, सतगुर की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई। अपनी कृपा करे गुर पाई है विच्चों आप गवाई। तृष्णा पुख विच्चों उतरे सुख वसे मन आई। सदा सदा सलाई है हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा। जे सतगुर सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए। सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल सांत वसे जप हृदय सदा सुख होए।

हर सुखदाता मन वसै। हों मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता, श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए जे अंदिन हर लिवलाए। सतगुरु पुछे सच संजम कमावे, होमे रोग तिस जाए। हर गुण गावे गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए। इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे होमे मेट समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अंदिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल न चुकई विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुक्म मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हों में विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उर्धार, श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया। गुरमुख अंदिन रह रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना न सेवियो, शब्द ना लगो प्यार। सहजे नाम ना त्याया कित आया संसार। फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर, कूड़े लालच लगिया ना उरवार ना पार। नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार पौड़ी। भगत सच्चे दर सोंदे सच्चे शब्द रहाए। हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए। हर रंग रहे सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए। सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता, हर जियो हृदय वसाए। बाज गुरु फिरे बिल लांदी, दूजे पाए खुआए, श्लोक महला तीजा। कल युग में नाम निधान पगती खटिया, हर उत्तम पद पाया। सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदिन नाम ते आया। विचे ग्रहे गुर बचन उदासी, हों मैं मोह जलाया। आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया। ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया। जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो, जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा। त्रै गुण माया वेख पुले, ज्यो देख दीपक पतंग पचाया। पंडित पुल पुल माया वेखे, दिखा किने क्यों आन चढ़ाया। दूजे पाए पढ़े नित बिखिया, नामो दै खुआया। जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ बधाया। छादन भोजन ना लेही सत पिखिया, मन हठ जन्म गवाया। एतड़िया विच्चों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया। जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया पौड़ी। माया मोह प्रेत है काम क्रोध अंकारा, ए जम की सिरकार है एना ऊपर जम का दंड करारा। मन मुख जम मग पाईन, जिन दूजा पाओ प्यारा। जम पुर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं ममता मोहनी, मन मुखानो गई खाए। जो मोह दूजे चित लाए दे, तिना व्याप रही लपटाए। गुर कै शब्द पर जा लिए, ता ए विच्चों जाए। तन मन होवे उजला, नाम वसे मन आए। नानक माया का मा

हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाए जा हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाए।

नाउ जात ना जायसी मनमुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता श्लोक महला तीजा।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरुमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरुमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिब लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभुवन सोजी पाए पौड़ी, हर कै पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जाय, हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाय, हर कै पाणे सुख पाइये हर लाहा नित ली जाय, हर कै तख्त बहालिये निज कर सदा वसी जाय, हर का पाणा

वाहु वाहु करत्या मन निर्मल होवे, हों मैं विच्चों जाए। वाहु वाहु गुरसिख जो नित करे, सो मन चिंदिया फल पाए। वाहु वाहु करें से जन सोहने, हर तिनके संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुर सिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है इसवाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमत्ती हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न को।

पाए खुआए, जम्मण मरण न चुकई होमे विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही, ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस पौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की ती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वड्याईया दरगे मोख दुआ।

पौड़ी अंसा अवतार उपायन पाओ दूजा किया ज्यो राजे राज कमाव दे दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लिया निर्भो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटैया तिथे सोग विजोग ना व्यापई अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आपरवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाम सदा ते आया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पै अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय महल पगति कर सरे सज्जन पाहुणे हो बरसना ता बरस कना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हों तुद त्याई जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाई जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाई चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यो चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आप

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया दरगे पाये ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे, जग में उत्तम कादिये विरले के ही के महला पंजवा। रखे रखनहार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साप जना कै संग पव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माह बिदारियन, ते साहिब की टेक नानक मन्ने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी। अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है, सच्चो सच्चा सच सच निहारी है, कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है, सबसे दे दातार जेत उपारी है, इक्कत सूत परोए जोत संजारी है, हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है, प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है, तेरी गत मित लखी न जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे, जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे, जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए, जा तू तुसे मेरवान।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर चोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो लगा सत गुरु सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लहिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफ्त पंडार कर्मी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर हर नाम जीवा सुन सुने। श्लोक महला पंजवा।

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अंदिन बिलपते ज्यों सुन्ये कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुस्थई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो न पेट अगही है। जन भगतन को कहो न मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों

मुसमुस रोवे कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग तागा बाहो बेई, तब लग बिसरे राम स्नेही। ओछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लेओ मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। जो राज देहे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बौर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सत

जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई, जो जल माजे माछलो मार्ग पेखणो ना जाई, जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया, नामे चे स्वामी बीठलो जिनती न जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर थी जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध त बचरे थनो बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगारियो, माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो, और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी।

0: बेसवा जोन वल वल अवतर है।
1: अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे,
0: सूकर जोन वल वल अवतर है।
1: अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे,
0: प्रेत जोन वल वल

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमंग सत आद पावरतंग परमद पतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयं नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं।

महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख पास सबागे।

नाही ना का बोल करत निमुख न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत सुखदाई पूरन प्रभ करता मेरे।

महला पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहाओ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पह आहा तिना प्राप्त एवं निधाना जिनके कर्म लिखा से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगल स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम निसाहा देव नारी महला पंजवा मन कह अंकार अपारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा कर कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेरे अंग बिलाते।

महला पंजवा तेरा जन राम रसायण माता प्रेम रसा निज जा को उपजी छोड़ न कतहु जाता रहो बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर वस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिन कीनो सौत विदाता सगल समूह ले उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गनारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाये अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांधे बहु जोनी परमाये टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआये करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाये संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाये देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दोए कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर्धरया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितो तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे।

सारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल सारे देव नदारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहा हो साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो प्रभ गुण गाए बिखे बन करया।

ऊंचा आन न हम सर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहा बहु व्यंत अत बड़ो बारो हा नहीं अगूचा तोल न तुलिय मोल न मुलिय कत पाइय मन रूचा खोज असंख्या अनेक पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा कहो नानक कृपा करे ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कमल महमा मन जीव सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो राग देव गंधार।

कहते थारो हो करत तराई दुश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर्वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत को ही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथे है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभ नानक जा का अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे सातक्षों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे सात संग।

रीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने संगत सिख दे हारियो नीत नानक पौजल पार पर जो

करिया बहु बंदे परिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत महको जाने जोगी जति तपि पचहारे और बहु लोग सियाने रहाओ छिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते परे परे सखनावे यह ताको विभारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तले बहुरंगी सबसे रह न्यारा अगनत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल कर्म कर नानक प्राणी चरण काहे चितलायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़ी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

मन सिंधिया फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठना मेरी जिंदड़ी मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी मन चिंदेड़ा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी गुरमत नाम प्रगासे राम हौ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी ज्यों जल बिन कम

हर हर नाम से आए राम, हर पाप बड़े लिख पाया मेरी जिंदड़ी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन बेदिया मेरी जिंदड़ी, जो बालक लग दुख खीरे राम, हर दिन शांत ना पा

गुण दसे हर प्रभु तेरे राम, जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी, करवाजे शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी, बिख बांधे हो मैं जाले राम, जो पंखी

हाँ बलिहारी तिनको मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम आधारो राम गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए बिक औजल तारण हारो राम जिन एक मन हर त्याया।

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी बह संतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आहार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम।

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

छत्ता पहला बिहागरा महला पंजवा संत कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर

कर से वो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जनता मार्ग सा दे राम मार्ग बिखरा साज गुरमुख हर दरगे सो

ए मन तन सब अर्पे हा राम, मन तन तन सब प्रभु केरा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा जन कह नानक मिल साद संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया।

हर रस चोया जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पाए अड़ा कर आए। राज बिहागरा महला पंजवा अत प्रीतम मनमोहना कट सोहना प्राण अधारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपर अपारा।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंदर नाम।

समरथ अगस्त अपार पूरन, जियो तन तन तुम मना। मूरत मुग्ध अनाथ चंचल, बलहीन नीच अजाना।

नानक सब किछ आप है अवर न दूज जाए पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा, तुझ जेवड़ अवर न कोई नी, तुझ जेवड़ होर

मन पर तीक न आया सहज न लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए।

सतगुर कह तै पन ना करो रहे अंक समाए अन दिन सहसा कदे न चूके दिन सब दे दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

बंधन तोड़े सचवस है, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किस देखे किसे का, जिनकी आतन साज, नानक शरण करतार की, करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे खात किया, जदों आपे खात किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया, फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख आप।

कहे कथे न पाए अंदिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किने न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटिजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करिजे आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करिजे श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह पैके ते निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी।

मनुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार, कूर कमावे कूर संग रहे कूर करे आहार, दिख मा

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है आपकी।

संध्या परवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे है। हर्षो प्रीत उपजे, माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या

आए हो सतगुर का पाना चित रखो संजम सच्चाने हो नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी अग्गे हर्षो केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सूचे आपे ही मोह पाए आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए जन नानक वडियाई आखे हर करते की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा मानस परया आया मानस परया आए जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया

पौड़ी जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपने भगता की पैरी पावे है धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

नानक आप अमेयो है गुर कृपा के रहा समाए आपे मिलिया मिल रहा आपे मिलिया आए। महला तीजा

तुर खसमे का हुक्म पाया बिन सतगुर चेतिया न जाए सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए दम दम सदा संभालदा दम न बिरथा जाए जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाल सियाना आपे मोनी।

बस सब कुछ तेरे बस है, तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो, सब पदार्थ

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ, दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, तिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए, गुणवंती नित गुण रवे।

साचे नाए रते बैरागी पाइन मोख द्वारा। एक को सच वरते सब अंतर सब ना करे सतपाला, नानक इकस दिन मैं अवर ना जाना सबना दीवान दयाला। बड हंस महला तीजा गुरुमुख सच संजम तत ज्ञान है, गुरुमुख साचे लगे ध्यान

गुरुमुख जात पत खट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करे।

ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लै रजाए, रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड पागी, जिन हर नाम से आया, गुर पर सादी मन वसाया, वडहंस महला तीजा, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए, हौ में विच सेवा ना हो वई, ता मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले, ता विच्चों हौ में जाए रहाओ, हौ में सब शरीर है, हौ में ओपत होए, हौ में वड्डा गुबार है, हौ में विच बुझ ना सके कोए, हौ में विच पगत ना हो वई, हुक्म ना बुझिया जाए, हौ में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हौ में गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे सच

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने हाँ क्यों कर पिर को मिलो आनी जो पिर पावे सा सुहागन साई पिर को मिले सियानी रहाओ मैं विच दोष हूँ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे हूँ फिर चितना आवा जिन पिर रावया सापली सुहागन ते मैं गुण नाही हूँ क्या करी दुहागन नित सुहागन सदा फिर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा मैं निर्गुण

क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए कुछ अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा से आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी सितलाए हो सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हूँ क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हो सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सच सवरा हूँ जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं देश नेहा इस मन तन अपना देवा नित पक्का फेरी सेव कमावा इस आगे पानी तोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम से आवा गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जित आप विखाले जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समाले सो हर हर नाम सदा सदा समाले जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर तेती

रहाओ। लाख भगत जाको आराधे, लाख कपि सर कप ही साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्ते जाने तोरा, है कोई साजन परदा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वडहंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजाने, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वडहंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को सब

तिने तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राता वढ़ंस महला पंजवा।

जल थल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे शरण परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी ऊठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंजा।

साल मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे ये सो खेल खिलाए बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिन लाता हौ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई।

सब सिंगार बनाया अमाली, बिन फिर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सो रहा समाए। हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली, जिचर मैं जानिया प्रभ दूरे। जा मिलिया पूरा।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहि समाए अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए जो पावे त्यो रखती आपे करे रजाए वडहंस महला तीजा मनुआ देह दिस्ताम दा ओ कैसे हर गुण गावे इंद्री व्याप रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरमत हर रस पीजे रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काढ लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाये मानस जन्म दुलंब है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिनके हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आइए नाता सो प्रमाण सच कमाइए। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए। जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे। किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया। लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना। सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना। नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना। दुख गया सुख आए समाना। गावन सुरनर सुगड़ सुजाना। सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे। माया मोहे चेते नाही एला जन्म गवावे। एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना। तेरा वक्त सो

जुग जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप भाणी सिच मन की पूरी सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नान।

हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसै पोहे ना सकै जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साकै साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए।

सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के, पज पे हर सरनाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम। रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर ना दाता। सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर सरनाई। जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवर न पाई, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया। कर मैं निज कर पाया, सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पाइन, मत परवान।

राम दृढ़ाए, जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

हौ गुरु बिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाए, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हों वारी गुरसिख नी प्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मूले करे सोई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाई। बहुत स्याणप लया न जाई, कर था के सब चतराई। गुर प्रसाद जन नानक।

हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम सिमर अज्ञान गवाया गुरु ज्ञान अंजन गुरु पाया राम गुरु ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिन

निफल जन्म चिन बिछा गवाया ते सापत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ सूखे भागहीन हर दूरे। हर हर तिन का दर्श न करियो जिनी हर हर नाम न प्याया जिनी दर्शन सतगुरु पुरुष न पाया। हम चात्रिक दीन।

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुख।

ना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाके पाप संतापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हों मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया, अरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी, हर गतिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन आया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

तन प्रेम हर हर लाए चावत मन जिने गुरुमुख जी किया अकरो कढ़ावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु वखाणी हर रंगे तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन सा वासे तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी दिखम लगाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया।

मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सात अनकंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी। हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभु हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक।

जिन हर हर रसना पनया राम सो सह सुहेले गुण अमोले जगत उधारण आए तह बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लगाए। जिन को कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सद कुरबान श्लोक।

जन साख अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन कन्हैया वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत्संग।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख लेहो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

राम काट काट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण के अंत किस कह न जाए कोई ना सके पहुंचा आप उपाय आप

केवड़ हंस है सच नाम उद्धार सत संग्रह है सद सच रहे सच्चे नाम प्यार सदा निर्मल मैल ना लग गई नदर की थी करतार नानक हों।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुरु।

सतगुरु मिले उल्टी भई भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जख मीठा लागे पाई, गुरुमुख

अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरुमुख जागे से उभरे भाई, अब जल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रख्या उधार। गुर शरण आई उभरे भाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाउ बेड़ा नाउ तुलहड़ा, पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, और थे सुख नाही। हो मैं जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन में रोवे ताही। प्राणी सतगुर से सुख पाए, सतगुर सेवे ता सुख पावे। नाहे ता जाएगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण ताक बहु कर्म कमावे, हर रस साधना आया। संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मिलाए। हर रस पी जन सदा तृप्ता, से विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंग कमावे, बिन गुर मग न पाए। नानक सतगुर मिले ता

तुम उपजे दसमत तब ही पाए, हर का नाम सच्चा मन वस्या, नामे नाम समाए, बिन सतगुरु सब जग बोराना, मन मुख अंधा शब्द ना जाने, झूठे परम पुलाना रहा, त्रैगुण माया परम पुलाया, होमे बंधन कमाए, जमन मरण सिर ऊपर उभो, गर्भ जोन दुख पाए, त्रैगुण वर्ते सगल संसारा, होमे विच पत खोई, गुरमुख होवे चौथा पद चीने, राम नाम सुख होई।

नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाओ, आपे जल फल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सबना रिज्क समादा प्यारा, दूजा अवर न कोए, आपे खेल खिलाएंदा प्यारा, आपे करे सो होए, आपे ही आप निर्मला प्यारा, आपे निर्मल सोए, आपे कीमत पाएंदा प्यारा, आपे करे सो होए, आपे अलख न लखिया प्यारा, आप लखावे सोए, आपे गहर गंभीर है प्यारा, तिस जेवड अवर न कोए, सब कट आपे भोग वै प्यारा, विच नारी पुरुष सब सोए, नानक गुप्त वर्त दा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए, सोरठ मैला चौथा, आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप थापे, आपे वेख विकसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वंचन सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस प्रापे, अमृत नाम महा रस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, रहाओ आपे तीरथ तुलहरा प्यारा, आप करे प्रभ आपे, आपे जाल बतायदा प्यारा, सब जग मछली हर आपे, आप अपुल ना पुलई प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुन आप बजाए आपे, आपे जोगी पुरुष है प्यारा, आपे ही तपतापे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाम जपाएंदा प्यारा, आपे ही जपदा पे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलाहदा प्यारा, जन नानक हर रस प्रापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर हर त्याय सुख पाया।

अतुल तुलाइंदा प्यारा जन नानक सद कुर्बान। सोरठ महला चौथा आपे सेवा लाइंदा प्यारा आपे भगत उमाहा आपे गुण गावाइंदा प्यारा आपे शब्द समाहा आपे लेखन आप लिखारी आपे लेख लिखाहा मेरे मन जप राम नाम ओ माहा अंधिन अंध होवे वडपागी ले गुर पूरे हर लाहा रहाओ आपे गोपी कान है प्यारा बन आपे गऊ चराहा आपे सावल।

सौंप आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सब संगत पुरुष तुम्हारी पुरुष है पुरुष मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन भेदया हर दिन रह न जा

गुरमुख जल पावे सुख सहदे हरिया पाए सुभाई। मन मुख भूखे देह विस डोले बिन नावे दुख पाई। जन्म मरे फिर जूनी आवे दरगे मिले सजाई।

होता हर नाम समान, जिसकी वक्त कोई कर जाने, जिसनों देश पाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरु पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई,

तेरी तू सर्व जिया दयाला सब किछ कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यो पिता पूत के पाला सूरत महला पंजवा कर पहला चौथ के गुरु गोविंद सलाई है पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार साध संगत को वारिया भाई जिन एक अंकार आधार सोई सत आराधना पाई जिसते सब किछु होए गुरु पूरे जान आया पाई तिस दिन अवर न कोए रहाओ नाम भी होने पच मोए भाई गणत न जाए गणी विन सच सोच न पाई है भाई साचा अगम धनी आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत साख्त सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई।

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस तराकत होए। ओट मदे जन पाई है भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके, जो लो पाओ अभाव इह माने, तो लो मिलन बुराई, आन अपना करत बिचारा, तो लो बीच बिखाई, माधवे ऐसी दिहो बुझाई, सेवो साध गहो ओट करना, ने बिचरे मोत चसाई, रहाओ, रे मन मुग्द अचेत चंचल, चित तुम ऐसी हृदय न आई, प्राण पत त्याग आन तू रचिया, उर्जो संग बैराई, सोग न व्यापे, आप न थापे, साध संगत बुध पाए, साकत का बतना यूं जानो, जैसे पान चुराई, ओत पराद अच्छा दियो ए मन, कहना कछु न जाई, जन नानक दीन शरण आयो प्रभु, सब लेखा रखो उठाई, सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलत्र लोक गृहवंता, माया संबंधे ही, अंत की बार को खरा न होसी, सब मिथ्या अपने ही, रे नर काहे पपोरो देही, उड़ जाएगो तुम बा

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा ते प्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा, अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया राखे। नानक तो गुरु पूरा पेट्यो सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेख है सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी। मन मेरे जिन अपना कर्म।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहा सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए, अगम अगोचर सब अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़क मोगृह अंध कूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकी तै आस पुजाई, दास अपने को तू विसरै नाही, चरण पूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर पर साध मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई, कहो नानक जित पाए दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे, शुद्ध न होई है काहू जतना, ओरक को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो करम पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा, पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है, एहो खसम का किया, जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सबना कर तू उधारा, कहो नानक गुर बिन नहीं करिए, एह पूरन तत्व बिचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम सत सारा, किलबिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा कृपत मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ। मुक्त पुगत जुगत सच पाये, सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये, हृदय त्याये सोई, करण कारण सम

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

न जाने तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पावक सागर

त्रिन जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब खाने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बन आई पूरब लिखिया पाई ए मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का कोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रखे विस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी

तो अभिमाना का मैं सुख नहीं पाया हो रे न तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर बिद जाने ताकी कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु परेत मुगद कह श्रोते हर नामा

तेरा अंग मंगल विश्रामा, मन बासत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आ गए मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वसया, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा त्याय है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई, राम भजन बिन काम न आवस, संग न काहू जाए।

साध विकार बिखे रस्मा तो असंख खते कर फेरे नान किसी प्रभ पावे बिनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ मैला।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरत महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु चाया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग

मन वस्यादनासी, ताँ को विघ्न ना को उलावे, जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसेरिद अंतर, अमृत हर रस्ता के, कर सेवा सेवक प्रभ अपने।

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किच करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोग मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हों मैं बंधन के पारा। देखिवाड़ अनक पर्दे में, परदारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न पाई, काड ले हो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सूरत महला पंजवा। पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई, गुर पूरे की बाणी, जप अनद करो नित पाणी। हर आचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाये, हर विसर न कभू जाय रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे, सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुखमासन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को, सो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा। पंच पदा। बिनसे मोह मेरा और तेरा, बिनसे अपनी तारी, संतो यहाँ बताओ कारी, जित हो में गर्भ निवारी रहाओ। सर्वपूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी।

पाये गुरु दुआरी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद सगल वनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा समान।

समायो सोरठ महला सन्यवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिन कै जन्म मरण कै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्णा सुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास से आवो ठाकुर को मंथन जीरे मुखी रहाओ सांत पावे होवे मन शीतल अजन नाम कर तुखी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल से पवन रुखी सूरठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ ए पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ रहाओ विसर नाही कब हो हिए ते ए विद मन में पावो गुर पूरा पे क्यों वड पागी जन नानक फतेह न पावो सूरत महला पंजवा जा कै सिमरन सब कछ पाइए बिरथी काल न जाई किस प्रभु त्याग अगर कतराचो जो सब में रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिलना।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ मेला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाए बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी सात संत प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई।

दर्शन पेटत भूत निहाला, हर का नाम विचार है। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हर हर नाम।

बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो, हर चरण शरण मोहि।

हारे दर्शन देखन हारे गुरपुरे की अचरज वड्याए नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलख विनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच।

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारया राखन हारे।

कीमत कहण न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे।

नानक सदगुरबाण। सोरठ महला पंजवा। दुर्त गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, अपना बिरज संवारिया। होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन दे सुखाली रहाओ। सतत उदाहरण सतगुर मेरा, मोहि तिसका परवासा, बख्श ले सब सच्चे।

हर के चरण हृदय उधार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाए, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई,

संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ पय दयाला, दुख मिटिया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा, मेरा सतगुर रखवाला होआ, पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ। साप दया प्रभ आप मिटाया, जन की इलाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए। हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र

ही बढ़ाए। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुरपूरे पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहाओ। अंदिन नानक नाम ध्याए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखे, जो बारिक पित माता। सोरठ महला पंजवा, करती जा चौपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा।

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय अनदिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी सिसलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

बिघन बिनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनग रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया कर कृपा नाम रख।

सास सास प्रभ त्याये, हर मंगल नानक गाइए। सोरठ महला पंजवा, सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी, तागत पई हमारी, हर की प्रेम।

जप नानक नाम सत साखी अपने दास की तैज राखी। सूरठ महला पंजवा विच करता पुरख खलोआ वाल न विंगा होआ मज्जन गुर आंदा रासे जप हर हर किल विच नासे। संतो रामदास सरोवर नीता जो नावे सो कुल तुरावे उधार हुआ है जी का। रहाओ जय जयकार जग गावे मन चिंदियड़े फल पावे सही सलामत नाए आए अपना प्रभु ते आए। संत सरोवर नावे सो जन परम गत पावे मरे न आवे जाई हर हर नाम ते आई। एहो ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवाने बाबा नानक प्रभ सरनाई सब चिंता गणत मिटाई। सोरठ महला पंजवा।

अपने दास का सदा रखवाला, पर कृपा अपने कर राखे, मात पिता जो पाला रहाओ। वडपागी सतगुर पाया, जिन जम का पंख मिटाया, हर भगत पाए चित लागा, जप जीवे से वडपागा। हर अमृत बाणी गावे, सादा की दूरी नावे, अपना नाम

आया हर संग सहाई पाया जह जाये तां सुहेले कर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी के संग सहाई रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रहन

पूरी प्रभ रब रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म वित्तों कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद तारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाय साध संग मिल त्याय मन बाचत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याय गुर गोपाल आनंदा।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल।

उपाय सुवाई, लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांती बहुड़ पिता दल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सब विद जाने ता किसते आख सुनाये, कहने कतन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये। अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये, होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे, गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे। जग जीवन नाम तुम्हारा।

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, पूनी बात न काई, रहाओ करते पुरख पा

दोपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुरपूरे कीने दाना सब कुशल केम प्रभ तारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे रहाओ साध संग मल लाती पार ब्रह्म पयो साथी नानक ना

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो इस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम।

देवें, प्रभु अपनिया संता देवें, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुवाखिया। सोरठ महला पंजवा, सोई कराए जो तुध भावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई, प्रभ आपे तैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रत

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन किंदिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावे नानक दास सच्चे गुण गावे सोरठ महला पंजवां गुर मिल प्रभु चितारिया कार्य सब

पंजवा अपना गुरु ते आए मिल कुशल सेती कार आए अपना गुरु ते आए

हर आराध सबो किच पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी,

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु।

धारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सो।

कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पदत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना दिखे खगौरी लाती संग मिलाए लिया।

पाया। सूरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुरपूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उदरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नगरी आया। सूरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई।

संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस भावे।

0: गुरपुरे ले तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला। अपने भगत की गणत न गणनी, राखे बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे, गुरपुरे तुस दिया, फिर नानक दुख न सिया। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे, गुरपुरे तुस दिया, फिर नानक दुख न सिया।
1: सूरठ महला पंजवा हर

सरनाई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए

गुर चरनी लाग तरयो पव सागर, जप नानक हर हर नामा सोरठ मैला पंजवा। पयो किरपाल दीन दुख पंजन, आपे सब विथाटी, खिन में राख लियो जन अपना गुर पूरे बेड़ी काटी। मेरे मन गुर गोविंद सद त्याय, सगल कलेश मिटै इस तंते मन चिंदिया फल पाई रहाओ। जी जंत जाके सब कीने, प्रभ ऊंचा अगम अपारा, साध संग नानक नाम ते आया, मुख उजल पे दरबारा। सोरठ महला पंजवा। सिमरो अपना साई दिन सरैन सद त्याई, हाथ दे जिन राखे हर नाम महारस चाखे। अपने गुरु ऊपर कुर्बान, पय किरपाल पूरन प्रवदाते, जी होए मेहरवान राव। नानक जन शरणाई जिन पूरन पैज रखाई, सगले दुख मिटाई सुख पुंचो मेरे पाई। सोरठ महला पंजवा।

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनिद पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिद। पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई। ऊन न कतहु बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने। प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो। अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर मादो। होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यो परयो डोले। मुख पसारे मीत, आज काल पुन तोहे ग्रस है। समझ राखो चीत, कह नानक राम भजले जात अवसर गीत। सोरठ महला नाम। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे। चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रख संपत। तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो। भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुग हारयो। मानस दे लही, नानक कहत।

रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ। मुकत पंस जान्यो तैनाहिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया। ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो नह उपजो कछ ज्ञाना काट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हार्यो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई। सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गन काशी उदरी ताको जस उधारो रहाओ। अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपय पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरह पारा। सोरठ महला नामा प्राणी कौन उपाव करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहु कैसी धर्म कौन फुन करी कौन नाम गुरु जाके सिमरे पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निद जाहि जपे गत पावे और धर्म ताके सम नाहिन एह विद वेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी जाको कहत गुसाई सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्यायी। सोरठ महला नामा माई मैं केविद लखो गुसाई महामोह अज्ञान तिमरमो मन रहो उरझाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर नह छूटी अदमाई। साध संग कब हो नहीं कीना नह कीरत प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुन राख ले हो सरनाई। सोरठ महला नामा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिखियन को तावत के विद्रोह को ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ मेला नावा रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रचपच, रैत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहन, पाजले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, पाक्यो तोहे पुकार। सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो।

संग छार सब पागे। कहो कहा जया मन बौरे को इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो कयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लाग्यो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हर शोभ ते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

आता गुर कृपा जे नरको कीनी ते एह जुगत पछानी नानक लीन पयो गोविंद स्यों ज्यो पानी संग पानी। सोरठ महला नावा प्रीतम जान ले हो मन माही अपने सुख स्यों ही जग पांदे हो को काहू को नाही राओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहु जिसके रह विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत ने रह कर की नार बहुत हित जांस्यो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी ए बिद को व्योहार बन्यो है जांस्यो न्यो लगायो अंत बार नानक बिन हरजी को कामना आयो। सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो मरे मसान ना जाई तृष्णा रात ना पर कर जावा।

पत साई मन बैराग रतो बैरागी शब्द मन वेदिया मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यो लिव लाई रहाओ असंख बैरागी कहें बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हृदय शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेतै मनुआ ना डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूजी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे।

हवर न दूजा भाई। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वड्याई, अपर अपार अगम गोचर, कहने कीम न पाई। सुन समाद महापरमार्थ, तीन पवन पत नामं, मस्तक लेख जिया जगजोनी, सिर सिर लेख सहामं। कर्म सो कर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ामं, मन मुख झूठ लह पैमानं, आपे ज्ञान अगामं। जिन चाखिया से साध जान, ज्यो गूंगे मिठियाई, अकथ का क्या कथिय पाई, चालो सदा रजा।

बुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेव्या प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पाई है प्यारे।

सवाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोए न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चाड़ मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हौवारी हौवारणे पाई सतगुर को सद बलिहार है जाओ नाम निधान जिन दित्ता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमती पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सोहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित लाए

मन हठ कार कमावनी पाए बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अंग दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगह नाही थाओ गुरमुख हो वै ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए टिड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिसते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछ है पाई नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपाल।

बिन लाट करें बहुतेरिया प्यारे, उतरे ना ही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे, तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे, जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे, सो मोह काले उठ जाए, मन मुख टोई न मिले प्यारे, दरगह मिले सजाए, जो गुरमेल सवारिया प्यारे, तिना पूरी पाए, संजम सह सियाण पा प्यारे, इक ना चली नाल, जो बेमुख गोविंद ते प्यारे, तिन कुल लागे गाल, होंदी वस्त ना जातियां प्यारे, कूड़ ना चली नाल, सतगुर जिना मिलायुन प्यारे, साचा नाम समाल, सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे, जिसनो नदर करे, आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे, अमृत पूर पूर परे, दुख सागर तिन लंगया प्यारे, पावजल पार परे, जिस पावे तिस मेल ले प्यारे, से ही सदा खरे, समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे, पगता तिसका तान, तिस सरनाई टै पए प्यारे, जे अंतर जामी जान, हालत पलत सवारिया प्यारे।

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद्ध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही कट तीरथ सब तरती प्रमयो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे ए विद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दातारा अन बस्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडोत खट कर्मा रत रहता हौ हौ करत बंदन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग न गया।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

सच नाम चित लाया, बिन नावे जग कमला फिरे, गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया ने फल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मृग ना जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर संदे लाएंदा इक ना भगती लाए इक आप खुआएगा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाएगा जन नानक नाम से आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हों मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलब है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर तीरथ नाए मन की सार न जाननी हों मैं परम पुलाए गुर प्रसादी पौ पया बड भाग वस्या मन आए पै पै मन वस होवा हों मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नौ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप लह जावना जां पकड़ चलाया काल।

आए फिर मिलन ना पाए नहीं जमे ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए मैला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। सिर हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर एक त्यावे एक इको हर सत्या। हर इको वरतै एक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपिया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आयो जित कुछ सोजी पाए, विन गिठा क्या साला ही है अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिए, नाम वसै मन आए।

तीजा हर गुण तोट ना आवे कीमत कहन ना जाए नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकारी बहु बहु विद पांत कर कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर श्लोक महला तीजा।

आए पौड़ी, हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई, जो हर दसे मित तिस हो बल जाई, गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई, हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई, बलहारी सतगुर तिस जिन सो जी पाई। श्लोक महला तीजा, पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार, त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार, पंडित पूले दूजे लागे माया कहवा पार,

पाए। अंतर अज्ञान अंधेर है, शुद्ध ना काई पाए। मन हाथ सहज ना बीजियो, उखा के अग्गे खाए। नाम निधान विसारिया, दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर

सब राज सृष्टि काले नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान नानक कुल

पौड़ी। जो हर नाम ते आए दे से हर हर नाम रते मन माही, जिना मन चित इक आराध्या तिना इक सुबिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेव दे जिन तुर मस्तक लेख लिखाही, हर के गुण नित गाव दे हर गुण गाए गुणी समझाही। वडिया

कीरत फल पाये जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अंधिन भगत हर उचरे हर भक्ति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा दिया सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीते पाने।

नहीं पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रभ पाया, सही विचक्षण जंत जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया, संत जना की तूर मस्तक लाया, नानक पय पुनीत हर की रचना।

न पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम

मरकत लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

एक बस अगोचर लही है, बस अगोचर पाई, कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जान्या, जब जान्या तो मन मान्या, मन माने लोग ना पतीजै।

पया पिखारी अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोग वह सोई कह रविदास।

तीन पतरफा क्यों अर काट्यो, राम कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ ना बिसरियो पानी। आपन बापे ना किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल।

नाही, ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह।

साहिब अपना अवर न जाचो कोए, नानक ता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए, साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ इकदमी मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिसे सरेवो जाके जी पराना, अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ, सास मास सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना, नानक बिन मैं सो किस पाये पूर्व लिखे का लेना, नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए, श्री मैला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर्ष्यो चित लागे फिर काल न खाए, रहा सच सिमरिए हो वे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यो तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए रहाओ, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना होर नाही थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्व दातार, तनासरी मैला पहला, चोर सलाहे चीत ना पीजे, जे बदी करे ता कसू ना छीजे, चोर की हामा परे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए, सुन मन अंधे कुत्ते कूड़े यार।

कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार, तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनाफरी मेला पहला, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिये तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई रहाओ, कादी पूर बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दानस बंग सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़या बूझे सो परवान, जिस सिर दरगे का निशान, तनाश्री मेला पहला, हर तीजा

नानक नाम शांत सुख पाए, तना श्री मैला पी जा। सदा तन अंतर नाम समाले, जी जंत जिन्हें प्रतिपाले, मुक्त पदार्थ सिन को पाए, हर के नाम रते लिवलाए। गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर प्रगाश हर नाम ते आवे रहाओ। ए हर रंग गूड़ा तन पिर होए, सांत सिगार रावे प्रभ सोए, हौ मैं विच प्रभ कोए न पाए।

वड़ियाई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब परज विगोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई, पगत कर

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सब सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच समालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मने आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ताँ आप जाए। साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनों कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर देव डियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मितदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाद साधे जन कोई, अचर चरे ता निर्मल होई। गुरमुख ए मन लया सवार, हो मैं विच्चों तजै विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे ना विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। त्रासी मैला तीजा, काचा तन संचे मूर्ख गावार। मनमुख पूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमती पाए। काचा तन सुन आवे जाए रहाओ, मन मुख फूले सब मरे गवार। पर जल डूबे ना

अवर न कोय जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन कहो सदा रहो रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटो करण कारण।

नानक परम पटकूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मानिया। सनातनी मैला चौथा कर पहला चौक दे।

हमारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी, जो कंचन बै संतर तायो, मल पापी कट के उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी, हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी, अपनी सेवा आग कराई, गुरमत अंतर जागी, हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी, क्या हम किरम नान निक की रहे, तुम वड पुरख वडागी, तुमरी गत मिस कह न सके, प्रभ हम क्यों कर मिले अतागी। हर प्रभ स्वामी कृपा धारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तना श्री मेरा चौथा, हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर वाणी, जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम किसके सद कुर्बानी, हर के संत सुनो जस्तानी, हर हर कथा सुनो एक निमक तल, सब के लिए पाप लह जानी। रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी, हर हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी, जिन जप्यो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से, सब लाथी पूख पुकानी, जिनके वड्डे पाग वड ऊचे, तिन हर जप्यो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तना श्री मैला चौथा, हम अंधले अंध दिखे बिचराते, क्यों चाले गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली।

बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप नोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली।

जन नानक संगत साधर मेलो, हम साध जना पगराली, सनातनी मैला चौथा। हर हर बूंद पे हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिल लाती, हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सकूं एक राती, ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाते।

तब भयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। त्रासी मैला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम। गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ जब मन रामे नाम हर जस उत्तम काम। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हूँ तिनके सब दलिहारे जाओ रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देओ सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। श्री मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी। गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

नहीं रहा हो। आपे गुरचेला है आपे, आपे हर प्रब चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसे, और सब त्याग को है हर पानी। सनातनी मैला चौथा।

ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पातशाह। तना श्री मैला पंजवा कर पहला चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराध मिटे किन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहे दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल मैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। श्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो।

आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदा चा पाए। अब मोहे राम जसो मन गायो कयो परदास सदा सुख मन में सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। चिंत अचिंता सोच असोचा

पूरन हुए तृप्ता में। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिनानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांसे कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो, गुर की ओ बंदानी तनाश्री मैला पंजवा। वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। दिखिया मैं किन्हीं तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे, बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा, उद्यम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम वंक कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके, दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके। हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना, सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तना श्री मैला पंजवा। लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे, जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे। जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई, वर्ण न साको उस्तत ताकी, कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो मनता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया, जो माता बाल गोपाला। तनाश्री मैला पंजवा। बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जे हर हर नाम दृढ़ाया, महा उद्यान अंधकार।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी नाम लैच कोट अगमासे, भगत बांसे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना। शीतल शांत महा सुख पाया, संत संग रहो ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

अमृत संग नए रुच आवत दिखै ठगोरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस युग में पवित्र पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ।

गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई साफ पास मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवे सब मध्ये जब तक पेसो जाए तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जाप पाप तगत खा पूरी जो प्रभु कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अघाई तनाश्री मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभु की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पे सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुखताया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे सनातनी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझ

सजन सुहेले राखो रखनहार दयाला नानक करके बोले त्रात्री मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक इसनाना उन दान बहु देन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिकम न जाई लैन राव जाप ताप कमन बसबा कर उर्द ताप ले गैन ए बिद न पतियानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन त्रात्री मैला पंजवा बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे अस्थिर करे ने चल ए मनवा बौर न कठूतावे है तू ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इनस्यो प्रीत न लागे संते संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरुष प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रात्री मैला पंजवा हर हर लीने संतो बार हर के दास।

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार, त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हा चितारिया, पतित पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, सुंगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांछे नित नानक।

गुरु समझाया आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया तांते मोतारी ओत गोपाल शरण पर्यो पूरन परमेश्वर बिन से सगल जंजाल रहाओ सुर्ग मृत पयाल कू मंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल कारण हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा।

औखी करी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रताले प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आब अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई तनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पतदाता सोई गनो अबागा चरण कमल जाका मन राज्य हो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम से मन लागा रहाओ जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन नारायण।

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट न आवे जाम मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सद कुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाये प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोखे कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे मिल साधु बिन से शोक तनासरी मैला पंजवा तृष्णा बुझे हर के नाम मां संतोष होवे गुरबचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सब खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तो

निंदक टिकन न पावन मूले, उड़ गए बेकार रहाओ, जह जह देखो तह तह स्वामी, कोई न पहुँचन हार, जो जो करे अवज्ञा जन की, होए गया तत्चार, करन हार रखवाला हुआ, जाका अंत न पारा वार, नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रवतारो कृपा कर पारो पूजा कह फूफ से पाड़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दो खातन साधु पूरे। प्रभु बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजे। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजे। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वडे भाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए। शक्ति रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई होआ कर्मरथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरया।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा कोही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतर एको जानो, ए गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा, साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना। जोबन तन प्रभ ताके मद में, तैन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यो मन न लगाना। जन नानक कोटन में किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी मेला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता सुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लो समानो। हर्ष शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मेला नावा, अब मैं कौन उपाय करूं। जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पत्यो उदर परो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस जाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम पगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल इक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहू कैसे, त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल तै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुरु के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे सात स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया प्रवान, ना स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जय देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पर पड़ फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पो भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभु तुझ सा लाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए।

जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत फाद राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमसित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकुर से मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद न चूके मन तेज एक खिन न तीर मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए

तीरथ गुरु प्रसाद को नेत्रों के कह। मन हट जो कमावे तिन ना लेखे पावे, बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी। कोई ऐसे रे सुख है दाई, प्रभ की कथा सुनाई। तिसके ते घट हुए हमारी, तो प्रसन्न गोपाल राय। काटे रे बंधन माए, गुर के शब्द मेरा मन राता। सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद, सुख नानक लादे हर चरण पराता। सफल सफल पई सफल जातरा, हावन जान रहे।

तीरथ नाम अनजाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सत बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना, साच ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दया मते, फिर संग पावे सहज नावे बेड़ी त संगम सत सते, आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कहे सब को केवड आखी है, हाँ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा, आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई, सनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया फिर न सच्चे कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाय सच में साच समाना, आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना, सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई, तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो, एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो, दो रहा चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब सबक सिंजापे साचा सृजनहारा, भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो, बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाने, पारस पर कै पारस होए जा तेरे मन पाने, अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचे साचे के वापारी, भूख प्यासो आज क्यों दर जाए सा जियो, सतगुरु पूछो जाए नाम से आए सा जियो।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो। गुण गाए विकसै सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अहंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे सा पाई है। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो। कदे ना विसारी हम दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अन दिन विवेक बुद्ध बिकरे। अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे। सत्संगत मिले वड़ पाग ता हर रस आवे जियो। अन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावे ता हर मन भावे। सदा अतीत बैरागी हलत पलत शोभा जग अंतर। राम नाम लिव लागी हरख सो दोहा ते मुक्ता। जो प्रभ करे सो भावे। सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया।

ओ प्रभ देख स्थित नाही, अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ न चाले, पुत्र कलत्र माया तोया, दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोया जियो। कर कृपा लो मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहे कर जोर प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया, अनदिन जपत रहे दिन राती, सहजे नाम से आया। नामो नाम मिली वडियाई, नानक नाम मन

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत।

एहेरी फिरे बदक जो कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा मात पिता पाई सुत बनता कहो को है काका। रहाओ जब लग जोत काया में बरते आपा पशु न बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने ताको अचरज काहो जो जल जल में पैसना निकसे त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा जो तन कांसी तजे कबीरा रमैये कहानि हो रा। रहाओ कहत कबीर सुनो रे लोई परम न पूलो कोई क्या कांसी क्या ऊखर मगहर।

किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही, रहाओ सोबा राज बिबै बड़ियाई, अंत न पाहु संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया, कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई, रहाओ बनता सुख देह गृह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई, अजामल गज गन का पतित कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने, सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज न आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई, तज परम कर्म विद निखेदे।

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

बारह जो जन छकर चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिट नावो। सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो। पाछे बौर नावन पावो अमृत बाणी कटते उचरो। आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लिपटावो। माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन तिन पौ सगल चुकाई है। कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला। जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला। जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा। मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला। सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसाबिरा अथोन पुरसाद मरा। असदा अस उसदा हर का बागरा नाचे पिंडी में सागरा रहाओ।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे मादो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर्ष्यों पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई पय उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातिक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लह न पारी। कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथंग। कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी। कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी। कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राज

पायो पूजो पाती काया बोखंड खोजते नव निद पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया चादननी का अनाज मंगो सब्जी का गौ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी सार की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैतसरी महला चौथा कर पहला चौप दे इको अंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूर पय है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलंथा जैतसरी मैला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग दिख चाखा हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पखान डुबत हर राखा जैतसरी महला चौथा हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध इयाना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे मेरे प्रीतम नाम पराना दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना जैतसरी महला चौथा सत गुरु साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुर बचनी बिस हर काडबा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतित पवित्र मिल साध गुर
हर नामे हर रस चाख बा रहाओ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लाग बा। तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गाए बा। तिनके भाग खीर तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाए बा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाए बा। जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाए बा। जय श्री महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुन्नी दे फिरें बिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी। गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम। हर पाई है सतगुर माजा, हौ बलिहारी सतगुर अपने। जिन गुप्त नाम पर गाजा, दर्शन साध मिलियो वडपागी। सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना। हर किए बहुगुण साजा, जिनको कृपा करी जग जीवन। हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे। जन नानक लेखा समझा, जैत श्री महला चौथा। सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई। सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंध पए है माया, बिख संचय लाए जकीड़ा। हर कै अर्थ खर्च नह साकै, जम काल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा। जय श्री महला चौथा। कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर उमाहा राम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा।
मोको तार कृपा मिली है गुरुदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाह, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करें दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुरु समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कढ़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग ओ महाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप ओ महाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म तर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप सोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम।

प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत सरी मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रमसा।

जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम भगवंत भगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ, समझ न परी दिखे रस रतियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जानियो नाहिन, बन खोजन कौता।

जाने हौ किस चिते या हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख।

आप गवाया जय तन पाग मथाने बहा पकड़ ठाकुर हों खिदी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया।

आई। मां मंगल रहस थिया, फिर दयाल सद नव रंगिया। वड भाग पाया गुर मिलाया, साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी, त्रै अंक अंक मिलाई। बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याये त्याये सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियेरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया कीने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईसे छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया।

ऊर्ध्वमुख कुचील विकुल नरक घोर गुबार। हर सिमरते तू ना जले मन तन।

होई। कुटुंब जतन करण माया ने कयो तुमे हर भगत भाव।

होई। जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेम खिन ग्रह में बस न देवई जिन सों सोई है कर अनर्थ गर्भ।

संत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते की भोण की तुमो मुघड़ा भोरी दितुम भाए मन वसंदड़ो सच सो नानक हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नाश होए सिमरत हर ना।

छतर चमर तक आसनं रतंत मूण अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरन।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

اج نہ لہندڑو مل نانک ساتھ نہ جلئی مایا پوڑی چلدیاں لال نہ

नच भोग रश्मिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विध

संता संग उधार सगला दुख लथास। श्लोक भावी उदोत करणं हर रमणं संज

करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने। दयाल

सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, हर पादर हर प्रभ केरा, हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोविंद हर प्रभ केरा, हर हृदय मन तन मीठा लागा, मुख मस्तक भाग चंगेरा, लोभ विकार जिना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा, ओए मनमुख मूड अज्ञानी कहिए, तिन मस्तक भाग मंदेरा, विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक पाग ले।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो, इक मोहत ना ए मन लायो। विकस्यो पेख रंग कुसम को, पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती, ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, इक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो, न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट, मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर, भगत वचन सुन आयो। नानक भाग परयो हर पाछे, राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहु करता। जो मृतक ओढाया रहाओ, ताए ताए किरपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा, कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी सेजा, कामन थाट बनाया। संग न पायो

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापति ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त आन न कथमू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारथ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना। सबना दे अधारी, नानक दा संत पाछे पर्यो। राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निद गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलाए रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे। पवजल जगत तरायण, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किच निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कहे जन नानक। सब देखे लोग सबाया। टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तापन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूरन सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी। वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन्ही समाले। बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने। हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना। दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन। जाका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे। सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये। माया रच बंधारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी। सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

छू ना छोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी, रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए बाहू चित लायो, सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया, तोड़ी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंहान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो, गुर मोह को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके

देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो डीहर न्याई मोहे।

आगड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्रासित मिट्यो रे। जाको लैणो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गरबा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग के तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना विचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत। एही कर्म तर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत। रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन तो दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण। बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान। रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जस पूर अगावे समरथ कान। तेरी

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ, देह विसरव रहा जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभो न मरते चूर, कंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर, सुख संपत भोग।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी विमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब देता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पै विस्मादा आनन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिनकी अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दोय कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरडी ठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए काड लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा।

तार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व न तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर तीरथ तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछ न विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा

कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाय रहाओ। जब चूठे को साथ जान के पासों रुच उपजाई, दीन बंद सिमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई, सह नानक अब नाहीं अनत गत बिन हर की शरणाई। तोड़ी बाणी भगता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। कांगरे बकबाद लायो जिन हर पायो तिने छपायो रहाओ। पंडित होय के देख बखाने मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही। पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई। पनक नाम देव

कुम्हार के कर हांडी अच्छे राजा के कर सांडी दो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी सांडी हांडी गो बाणे के कर हिंग अच्छे पैसर माथे सिंह गो देवल मदे लीग अच्छे लीग सीग हिंग गो तेली के कर तेल अच्छे जंगल मजे देल गो माली के कर केल आछे केल बेल तेल गो संता मदे गोविंद आछे गोकल मदे श्याम गो नाने मदे

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटन करके पाप सब खो गए, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साव सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंश न पारावारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जाके हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित त्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षो प्रीत लगाए दिन हर प्रीत हो।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।

कसमेश दस्तंगीर आखिर दे अस्तम कस नादार दे चू सवद तकबीर सब रोज दस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे नने की कार करदम मम ई चुनी अहवाल बद बख्त हम चो वकील गाफिल दे नजर दे बात नानक बुगो।

मैं दर मांगत पीछिया पाए रहा केसर कुसुम मृगम हरणा सर्व शरीरी चरणा चंदन पगता ज्योति नेही सर्वे परमल करना क्या पट पांडा कहे ना कोए ऐसा पगत वर्ण में होए तेरे नाम निवे रहे लिव लाए नानक सिंदर की।

तन माया पाया प्यारे लीतना लब रंगाए मेरा कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए हो कुर्बाने जाओ मेरवाना हो कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंसे भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला श्यामड़िए मानड़ा।

साला है सच सब ऊपर हर तन जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ। पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वरते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया। ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में बिन सह सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ। सावेला चित ना आवे जित आए कंटक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै। तिलंग महला पंजवा कर कहला

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू, है तू होनहार, अगम आगाध ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिन सहसो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरह संसार। कौन नानक प्रभु।

अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे में दीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सुरैन जे तुद अरादे सो क्यों दोजिक जाए। अजराइल यार

हरतियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिले गुर सुख आए मिले तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए जिन गुर का

लिया से आधार पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गलाया जो गुरुमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दी जय हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल की जय पान सुपारी खातियां मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम मेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुरु के त्या रंग रलिया माने सतगुरु दाता किए उस करे पसाओ हौ गुरु विट्टो सदवारिया जिन बितड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हौ वेख वेख गुरु विजसिया गुर सतगुरु देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुखो सब जारी हर का मार्ग आसी है कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वदाने हो सतगुरु को सगवारिया गुरु बचन समाने तू ठाकर तू साहब हो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी।

लेहो रे मना जाग लेहो कहां गाफिल सोया जो तन उपजिया संग ही सो भी संग न होया रहा माप पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय है सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाम हर जस रे मना गाय जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

तेज कतेज इस तरह पाई दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बात बताहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पाक्षा सामले बरना, अस्पत गजपत नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुरत समायण होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशल कामा रहाओ। ए मन की हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिय इन दिग अमृत पावो। मन संपट जित सत्सर नावन तावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहें कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा।

पपिया होवे पपकने तीर्थ मल मल नाए तेरा सदना सुनीजे पाई जे तो बह अलाए रहाओ जैसा बीजे सो लुने जो खते सो खाए अग्गे पुछ न हो गई जैसा निशाने जाए कैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए जो दम चित ना आवई सो दम दिखा जाए ए तन वेची बैकरी जे को ले जिकाए नानक कम ना आ।

जोग ना सुनसा, जोग ना डंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुनी वाये, अंजन मन निरंजन रहिये, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिये सोई रहा, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश दिशंकर पवे, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, नानक जीवतिया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सुजी वाजे तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सुई महला पहला कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन सराग बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल कल मैया।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, कौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब दी, हर अस्तुर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर वेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रसमान है, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको कीजे दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुख है हर रंग चालिया, फिर गौर न होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुख है हर उपदेशिया, हर के त्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आमन जाना अंग, हर प्रभ चित न आयो, मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करें नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए सुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे ब्या प्या सबक न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए।

गुरुमत नगरी खोज खो जाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुरु मिले सब दुख गवाई, रहाओ हर गुण गावा जीना मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभु प्यारा तू चुड़ाई, सत्संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा।

हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के सबद समाने रहाओ। हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुगद नर

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। तू ही महला चौथा, जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सहज समाए। हर रस जन चाको जे पाए, तौ कत अनत साध लोभाए। रहाओ गुरमत रस रासो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदासी सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित तैसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इक गाए। पतित जात उत्तम भया, चार वरन पे पत।

कमाई जिन की एक सेना चेतें बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई। हो मैं रोग सब जगत व्यापिया तिनको जन्म मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटे किस जन को हो बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आप।

रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साके, ज्यो पावे तिवे बस रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया, जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद शिष्ट सब काजी, कोई छेवा करियो जे किसीता होवे, इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करें सिरोवे, हर की वडियाई हों आख ना साका।

तल सल मैयल रहा भरपूर, निकट वस्ते नाही प्रभ दूर, लोक पतिया रे कछु न पाइए, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे, दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोर करो अरदास, खुद पावे ताने रास, कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ते आए। सूही महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुकम तजे अभिमाने, त्रैस्यों राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभु मिलन निशानी, मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे, सोई कमावे जो प्रभु पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, सिर पछतावे जब रैन बिहावे, कर्महीन मनमुख दुख पावे। दिनो करी जे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुही महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार, सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी, कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंत रिझाया, वस्त्र लीना गुर परम चुकाया, सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा। प्रगटिया सूर जोत उदियारा, सेज बिछाई सर्द अपा

उनसे ओहियो मिलन प्रवताई, खोज चरयो देखो प्रह जाई, सुन सदेश रो प्रह ग्रह सेज बिछाई, प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई, किन विद हीरो तीरे निमानो, मिल साजन हो तुझ कुर्बानो, रहाओ एका सेज विछी तन कंता, तन सूती तिर सज्जा गंता, पियो मदरो तन मतवंता, तन जागे जे तिर

हुए कृपाल प्रभ मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी सब करें फिर पाया, सगल सिगार हूँ मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह फिर है पाई, खोलो कपाट का मन ठहरा।

क्या सेव कमावो, क्या कहरी जावो, विद कित पावो दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए, मन तरसे चरनारे, पावो दान तीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को

कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वड़ियाई, तुम सुखदासे पुरुष सुभाई। रहाओ दूजा सुई महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना, रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बहुर बहुर लपट्यो जंजारा, रहाओ बिके नाद कर्म सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे, रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहि साथ संग दीजै, तो किस पाये जो हो ये रे ना। जिसे बुझाए किस नाम लेना, सुई महला पंजवा। कर में ठाकुर नदर ना आवे, गल में पान ले लटकावे। परमे पूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप खप मरता।

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, तुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पाम मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सोहा।

मैं खरीद हूँ दासरो तेरा, तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा, कोट दास जा कै दरबारे, निमक निमक वसे तिस नाले, हों किछ नाही सब किछ तेरा, ओत पोत नानक संग।

है गीत नाद अखाड़े संगा, उहा संत करे हर रंगा, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा, दोहज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जाके दर्श पाप कोट उतारे, पेटत संग ए पवजल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे, जा की तैल जम दूत बिदारे, जा की तीरथ इस मने सुधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभु के सेवक प्रभ

कृपा निदान नानक को करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात, तू ही महला पंजवा। कट कट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेक पेक मन विसारे, रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे, ओट गही अब साथ संगारे, अगम अगोचर अलखा पारे, नानक सिमरे दिन रह नारे, सुही महला पंजवा। कवन काज माया वड्याई, जाको बिन सतबार न काई, ये सुखना सोत नहीं जाने, अचेत व्यवस्था।

जाकै सिमरन कच पौना व्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी।

सब माने स्वाद बाद ईरख मद माया किन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा देखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्तु को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुतीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे ली जय सूही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ सो

पहचाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंक की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची

संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला।

जब तक देखो हर संग सहाई, जब मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस बेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदार है, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी, सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद दिनोद मंगल।

मन तन प्राण जियो अरपाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा। बैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महा निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे, लोभ मुआ तृष्णा।

कर कृपा प्रभ अपना करया, तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना, रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए, सुई महला पंजवा, दीन छदाए दुनी जो लाए, दोही सराई खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो परवान, अपनी कुदरत आपे जान, रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह कोसे दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे, अगम अगोचर सच साहे।

प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख अनद विहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक।

चरण कमल जाए बलिहारा, तुझ बिन ठाकुर कौन हमारा। रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई, पूरब कर्म लिख तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न साके तीने ताप, निमख न बिसरे हर

हर हर नाम सिमर रत्नागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पाप जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साज सुहाओ। आठ पैर पार ब्रह्म त्याय, पूर्व लिखित होए ता पाई है। शरण पे जप दीन दयाला, नानक जाचे संत रवाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जाने रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा। जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाव जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा ते, राम रसायन अंदिन माते। वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा, संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया। गुरु त्याए हर चरण वंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अच्युत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी। कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा, अमृत बचन साध की बाणी। जो जो जपे तिस की गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा, कर तीजा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला। रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला। अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाके संत रवाला। सुही महला पंजवा, किस दिन दूजा और ना कोई, आपके थम्मे सच्चा सोई। हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। तुही महला पंजवा, दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग प्राप्त होई। रहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम बिछोहा सत कसाई, निर्दय जंत तिस दया न पाई। अनेक जन्म बीतन परमाई, कर वास न देवे दुत्तर माई। दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे।

कामना तौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभु चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज न किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कह ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दित्या जे रच लो भाए सब किसे तुमरे हाथ प्रभु आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए कुही मैला पंजवा हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा पाई नीत सुख सक

हर गुण निध पाए, अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार, चितवो मन आशा करो जन का।

गुरिया मोहन लाल ना, जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया, रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया तिन तिन तिन तिन करिया, विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहुविध क्रिया, पर को हिरिया दिखना क्रिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया। सुही महला पंजवा, रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावै तू सर्व जिया प्रतपाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुद पावै तो परवान मन तन तू है आधारी राव तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूरन हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाव अपार अत ऊंचा कोई अवर न तेरी भांते ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रैन साथ साथ गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा तू ही मैला पंजवा विसरे नाही जित तू कभू सो थान तेरा केहा आठ पैर जित तुद पियाई निर्मल होवे देहा मेरे राम हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साथ संग तिन शरणाई पाया राव वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिर दिल लाते ते भी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता तिन भी अंक न पायो तेरा लाए थके विभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन केट्यो।

निमुख सिमरत जी छूटे, संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का, सो गुर प्रकादी करिए रहाओ, कोट तीर्थ मजन स्नाना, इस कल में महल परी जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, पगता बने आई प्रभु अपने स्यों, जल थल में यल सोई रहाओ, कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर्षियों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा के तक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर पेटिया, से सब ते पे निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरण आई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय, तुद चित आये उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतू काची देह ध्यानी कृपा करो कब करने हारे तेरी बस निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याये तेरी गत में तू है जाने कुदरत कीम न पाये निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञान।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाय के साता कर चवर टुलावा चरण तोड़ मुख।

शाही सच्चे से पीरा पे सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पीसन।

कुर्बान जाए उस वेला सुहावे जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ है कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा तुद चित आए मां आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास करी।

तेरे दर्शन को बल जाई, अमृत बचन हृदय उधारी, तो कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुझ पे सारी, तुझेवड़ अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोए, दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ

कर कृपा गुरुदेव दयाला गुण गावा नित स्वामी रहाओ। आस शहर प्रभ अपना त्याई है गुर प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्या यो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला। राग सुही अस्पदियां महला पहला कर तहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहाओ। सह सिदार कामन कर आवे पां सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो पा।

सच्चे से तीरतियां जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे से उचित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन ना है जियो। अवगण मुट्ठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो। गुर रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सतगुरु।

गुणसार अंतर तू वसे मन माहे सहजे रस रस है। मूर्ख मन समझाए आंखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल ना ही दुख संतापना। मनमुख परम पुलाना ना किस रंग है, मरसी हो विडा।

आपे रहा समाए सो विस्माद कया। तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख हदूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते, गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नाही आपे, गुरमुख हो वे ता एको जाने हो मैं दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो जिन साचे स्यों लिव लाई, शब्द चीन आत्म प्रगासिया सहजे रे समाई। रहाओ गुरमुख गावे गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खटे संसारे, माया मोह सदा दुख पाए बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाए, साचा साहिब सब सिफत है साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है होमे विचो जाए, आपके दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिप्त साचे रंग।

गुर कैसे सुवाए। मन मकसद ही कूड़ो बोले बिक भी जय बिक खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए। अक्सर तीर्थ गुर शब्द दिखाए तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर से पाए। तन मन सब किछ हर किस केरा दुर्मत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे होमे विचों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए ता सतगुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अप सवाल्यो फिर वसे जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुर का शब्द समाले हर की भगत सदा रंग

काया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली गुरुमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसे अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगत बूझे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निद पाई है गुर के शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, ए मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाइए मोल कित ही नाम पाइए, नाही नाम पाइए गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे और क्या को करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही का जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी, राग सूही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुनिया ना साला है जो मरवंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा रे परवाहो रहाओ, दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिए वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना भुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन, आप दुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोवन, निंदा पली किसे की नाही मन मुख मुगद करन, मुंह पाले तिन निंदका नरके कोर पवन, हे मन जैसा सेवै तैसा होवै तेहे कर्म कमाए, आप बीज आपे ही खावना कहना किछु ना जाए, महापुरखा का बोलना होवे किते पर खाए, ओए अमृत परे पर पूर है ओना तिल ना कमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवट पागी जे

सच्चा आसनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेले सो प्रभ सदा समाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए सो सो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसरे गुरमति विचार सतगुरु मेले ता मिल रहा साथ रखा उधार मिले।

मनमुख मन न पिजई अपने ले चित कठोर सपे दूध पियाय अंदर हिसने कोर आप करे किस आखिय आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे पास हच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उठे कूड़े न टिकन ओना सच न पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर्ज मैं वारो वार पया किरत कमावना कोई न मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सुन लिव लाए हों मैं मेरा छड़ तू ता सच रहे समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रंग गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो समाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमती सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुर सेवन, अंकर नव निर्नाम है खान खर्चन ना निकुटे। हर गुण सहज रवन ना होए जन्मे ना मरे ना होए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर सो केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अंजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है, कित विद मिलिया जाए गुर के शब्द प्रम कटी है अचिंत वसे मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन हों तिनके बलिहारने, मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, उर पूर्व होवे लिखिया गुर पाणा मन लेन। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुर पूरे वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित कट प्रगट होए। सब अंतरजामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए, मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला तिचर आखदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए थाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसपे आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताई, कृपा करें तो सतगुरु मिले हर हर नाम से आई रहाओ। जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख देहे ताई ती राजा, दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई। नानक गरीब कह पया दुआर है, हर मेल लहो वड्याई। अखी काड करी चरणा तल, सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अरादी, जे मार कढे भी त्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाई।
जे तुद वल रहे ता कोई किहो आखो, तुद विसरे हैं मर जाई। वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई, नानक विचारा पया दीवाना हर तौ दर्शन कहताई। चखर चांगी मीह वरसे पी गुर देखन जाई, समुद्र सागर होवे बहु खारा गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यो धरती सोब करे जल बरसे त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होई सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई।

जाए। जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैद रखाए। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कक्कर वर्फ वर्षे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभपूर रहो है, जत कत तत् गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। मैं हर हर नाम विसाहो गुर पूरे ते पाया अमृत अगमा थाओ रहाओ। हों सतगुर वेख विगसिया हर नाम में लगा प्यार। कृपा करके मेले अन पाया मोख द्वार। सतगुर बिरही नाम का जे मिले ता तन मन देओ। जे पूरब हो वै लिखिया ता अमृत सहज पियो। सुतिया गुर साला ही है उस दिया भी गुर आलाओ। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हों ताके तो वा पाओ। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मिलाए। सतगुर मिले हर पाया मिलिया सहज सुभाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं किस देखन का चाहो। हों तिस बिन करी ना जीवऊ बिन देखे मर जाओ। ज्यो मछली बिन पानी है रह न कितै उपाए। त्यों हर बिन संत न जीवई बिन हर नामे मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहा। हर हर नाम रतन है गुर तुठा देवे माए। मैं तार सच्चे नाम की हर नाम रहा लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामों दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए।

क्या कै संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे।

कछु सियानप उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल लहो नानक अरदासे, पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक त्याए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना। आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूरी महला पंजवा, अष्टपदिया कारनावा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विंसनी कूड़ कमावे तंग जियो। नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरे, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगह पैदा जाए जियो, ऐखे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम धन माल जियो। मन से कमो न विसरे, जा आपे होए दयाल जियो। आन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत न पाये, ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसरे, सो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांजी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्व में, तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सुई महला पंजवा, अष्टपदियां।

से वाडिया हौना छोड़ो कंथ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा हिरो महिंजासरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मू दातड़ी नित हृदय रखा समाल। पाव जुलाई पंध पौ नै दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुरथी वै कृपाल कितनी लख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया तू साही हू साहो हो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया चुप पोरी नदर निहाल देह दर्श रंगवाणिया जय जिठे मन तीरिय किल विकवंज।

सो क्यों विसरे माओ में जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पे मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संसाए। सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम निधान अपार पगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। रहा मोह बाद अंकार सर पर नुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरक अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार

पहला कुचजी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हों क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे हो जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो इकत तोल नाम बड़ा हों सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो हों इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ी आस जियो तै सहनालो मुतियस दुखा कु तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागनी मैं डोहागन काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सोह रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो पाणे सोह पिहावला हों आमन जान मोई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हों कह कह तै पई आस जियो क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूप प्यास जियो

गुणवंती। जोधि सह गुर सिखड़ा तिस निर्निव लागो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दियो बताए जियो। हों आया दूरों चल के

मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी हौ रजा तृप्त अघाय जियो जो गुरु दी सह सिखड़ा तिस निव निव लागो पाई जियो जो गुरु

त्रिभुवन कंत्र वै सुहागण अवगणवंती दूरे, जैसी आशा तैसी मनसा पूरया कर पूरे। हर की नार सो सर्व सुहागण राण न मैले वैसे, नानक में वर्षा चा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे। बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहोरे बलराम जियो, सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो। कृपाया करते कर पाया मेट न सके कोई, जान जी ना उन रहने केवल रव रहा त्यो लोई।

ज्ञाने सच संतोष सदा सच पल्लै सच बोले फिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत पंथ समाए राग सुही मैला पहला संत कर दूजा।

सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया अंदिन मेल कया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजन आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ताप सब पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत ते तू सकलो दाता सिर सिर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए काल विकाल कहे देवाने मन राखिया गुरु ठाए नानक अवगुण सब जलाए गुण संगम तब पाए राग सूही महला पहला करती जा।

तेरा परवासा, दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाए, नानक साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

पुरुष विदाते तस्तर मार वसी पंचायन अदल करे विचारे नाम राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आशा मनसा पूरी राम फिर रावेड़ी सगदरली रव रया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसदी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपुरे सत्ताई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलो आसर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना वे ना जासी नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अविनाशी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सुई छंत महला पहला कर चौथा जिनकी आतिन देखिया जग पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोभ सेती पंच शब्दी आया जिनकिया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सों गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सों से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गहर है सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा कहो वे वासला कद वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मल्ली है जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत की जय गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय आप करे किस आखी है होर करे न कोई आखणता को जाई है जे पूलड़ा होई जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले सुने देखे बाज कहे है दान हम मंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नाम का सच सोई आप करे किस आखी है होर करे न कोई सूरी महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई सुख सहज आवे साथ पावे साथ की मत क्यों टले इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले परपंच मोह विकार था के कूड़ कपट न दोई मेरा मन राता

गुर कह मोल कर आया, आप लड़ा प्रभ सहज पछाता, जामन सा फैलाया। इस नाल गुण गावा जीत पावा, क्यों मिले हुए पराया, साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया। आए गया की ना आयो, क्यों आवे जाता, प्रीतम से मन मानिया हर से तीराता। साहिब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट उसारिया, पंच तू नायको आप सिरंदा, जिन सच का पिंड सवारिया। हम अवगुणियारे तू सुन प्यारे, तुद पावे सच सोई, आवन जाना नाची है साची मत होई। अंजन कैसा अंजी है, जैसा फिर पावे, समझे सूझे जाऊं।

कौन अथेवे। कंस मंस पखंड ना जाना, राम हृदय मन मानिया। अंजन नाम तिसे ते सूजे, गुरु सबदी सच जानिया। साजन होन आपने क्यों पार कर जाही, साजन राते सच के संगे मन माही। मन माहे साजन करे रलिया, कर्म कर्म सब आया। अठ हठ तीरथ पुन पूजा, नाम साचा भाया। आप साजे थाप वेखे, तिसे पाना पाया। साजन रंग रंगी लड़े, रंग लाल बनाया। अंधा आगू जेती है, क्यों पादर जाने। आप मुझसे मत होछिए, क्यों राह पिछाने। क्यों राह जावे, महल पावे। अंध की मत अंधली, विन नाम हर के कछ ना सूजे। अंध बूढ़ो तंदली, दिन रात चानन चाओ उपजे। शब्द गुरु का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती। राह पादर गुर दसे, मन परदेसी जेती है सब देश पर आया। किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी पर आया।

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई, कीमत सो पावे आप जानावे, आप अपुल ना पुले, जय जयकार करें तुद पावे गुर के शब्द अमूल्य, हीनो नीच करो बेनंती साथ ना छोड़ो पाई, नानक जिन कर देखिया देवे मत साई, राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुख सोहेला हर त्यावो, गुरमुख हर फल पावो, गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुर अपने बिट्टो, जिन कारे सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो, नानक कह सुनो जन।

आप वखाणी। भगता की चाल सच्ची अप निर्मल नाम सच्चा मन भाया। नानक भगत सोए दर साचे जिनी सच्चो सच कमाया। हर भगता की जात पत है भगत हर कै नाम समाने राम। हर भगत करे विच्चों आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाने राम। गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने पै भगत मीठी लागी अंधिन।

सच्चा सबक सच्ची है शोभा साचे ही सुख होई। साच रते भगति करंगी दूजा रंग न कोई, नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवै

नाम संभाले। गुरु सबदे राता सहजे माता नाम मन वसाए, नानक तिन करे सद ही सोहिला जे सतगुरु सेख समाए। बिन सतगुरु जग परम पुलाया हर का महल न पाया राम, गुरुमुखे एक मेल मिलाया तिनके दुख गवाया राम। तिनके दुख गवाया जहाँ हर मन पाया, सदा गावे रंग राते हर के पगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते। साची पगत करें दर जापे कर दर सच्चा सोई, नाम सच्चा सोहिला सच्ची सच बाणी सब दे ही सुख होई। सुही महला तीजा जे लोड़े वर बालड़िए ता गुर चरणी चितलाए राम, सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए गुर के सह सुभाए, सापन कंठ के आरी सच संजम सदा है निर्मल गुर के सबसी दारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन

बहु कृपा तारी हर कै सबत सुभाए राम मिल सबत सुभाए आप गवाए रंग सोरलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जे चले सतगुरु भाए।

सब दूर वसे है, इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वड पागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे अंग हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो,

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूर विहाजे, कूर लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभदाता, सतगुरु पुरख मिलाए।

लगन गणाए हृदय धन को माया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाईया बलराम जियो पत्ती बचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरुष अगम अगोचर सद नवतन बाल सखाई नानक कृपा करके मेले विचर करे न जाए। सुही महला चौथा हर कैलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो पाप सजाया बलराम जियो कर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो सिमरत नाम दृढ़ाया।

गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मंथन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंजन हर लिवलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम।

बात न जाए। हम पूछो अपना सतगुरु दाता किन विद उत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए, गुरुमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया वडपागी, सच नाम लिवलावे मत प्रगास पई मन मानिया, राम नाम वडिआई नानक प्रभ पाया, शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनों प्यारा मैं मिलिया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, हौं मन तन देवा सतगुरै मैं मेले प्रभु गुणतासे, तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर सब आसे, वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया, हर मार्ग पंथ दसाहा, कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा, हौं तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा, वड पागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा। मन दह जिस चल चल परमिया, मन मुख परम कुलाया, नित आसा मन चितवे मन कृष्णा पुख लगाया, अंता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक।

आया, मैं अंतर वेदन प्रेम की गुरु देखत मन साधारिया, वड पागी प्रभ आई मिल जन नाम खिन खिन वारिया। सूही छंत महला चौथा, मारे हसवे जन हो मैं बिखिया, जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया, दे कंचन वे वनिया इन हो मैं मार विगुतिया, मोह माया वे सब काल खा इन मन मुख मूड सजुतिया, जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हो मैं छुटिया। वस आण होवे जन इस मन को मन बासे ज्यो नित पौंदिया, दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया, गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौदिया, जन नानक प्रभ देहो मती छड़ आसा नित सुख सौंदिया। सा तन आसा चित करे राम राजिया, हर प्रभ सेजड़ी है आई, मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजिया, कर कृपा लिहो मिलाई, मेरे मन तन लोचा गुरमुखे राम राजिया, हर सरदा सेज बिछाई, जन नानक हर प्रभ पानिया राम राजिया, मिलिया सह सुभाई। इकत सेजै हर प्रभु राम राजिया, गुरु दसे हर मेले, मैं मन तन प्रेम बै।

सेव ठाकुर नाथ पुराणा, सुन बावरे जो आया तिस जाना, निचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमा।

तू वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जैसा मत दीजै, हाथ पैर तू त्याई। गर्भ ना की जय रेण होवी जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अट गहर गंभीरा, तुम फिर हम बोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो, इतनी लोहरिया राम, हो किछ नाही, एको तू है आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आसन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम, सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे, मन मुख फूली बहुती राही, फाती माया फंदे।

अरब उपजे सात संगत संग बने, जिन उद्यम की आताल के रात इसकी उपमा क्या गनी। अखट तीरथ पुन क्रिया महानिर्मल चारा, पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम, संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो, गुण गोपाल उचर रसना सदा गाये अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तने अमृत पी जय, बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा, कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना सितारे। पतित पावन हर बिर सदाए एक किल नहीं पन्ने काले, खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा, नानक दास वा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हर विषम पाई जी हर दर्शन देखा तारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग छारा। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा, जिस जेवल अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या, जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर तरया कब जल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा। हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो, गुर सतगुर कह।

जाए कर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नित स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सू है वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वदिया रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आपने ली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सब सदा समाल नानक जन्म सवार है अपना कुल भी छुट्टी नाल। कौड़ी आपे तख्त रचायन आकाश पाताला हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाए दा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वर्तदा आपे प्रताला।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एनस लागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तेजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सौ न पाई है कर वेश रही नानक तिन्नी सौ पाई।

जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा, तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा। इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा, सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा। जिस तू मेले सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा। सुहुविये सुहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ। खिन में टूट सब विनस जाए, जो टिके ना बिरकी चाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीर सचड़ाओ। उल्टी सकत स्वे कर आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर आपने, जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा। सूहा रंग विकार है, कंत ना पाया जाए। इस लहदे बिलम ना हो गई, रंग बैठी दूजे भाए। मुंद एआणी दुमणी सू है वेश लुभाए। सर्व सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए। नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई, तिसदा अंत ना जापई। गुर शब्द बुझाई, माया मोह गुबार है दूजे परमाई। मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए। जो तिस पावे सोथी है सब चले रजाई। श्लोक महला तीजा। सू है वेश पावन कुलखणी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार। उस सील न संजम सदा झूठ बोले, मन मुख कर्म खुआर। जिस पूरब हो वे लिखिया, तिस सतगुरु मिले पतार। सूहा वेश सब उतार तरे, गल पहरे खिमे सिगार। पेये सहरे बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओह रलाई किसे दी ना रले, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला। सूहा रंग सुपने निसी, दिन तागे गलहार। सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इहु जग आप उपायन कर चोज विधान, पंच तात विच पायन मोह झूठ गुमान। आवे जाए को आये मन मुख अज्ञान, इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान। भगत खजान

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पे गवारी जिनकी एतसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार सेजे तंत न आयो एवे पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग स्यों होमे तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ो में आप कर आप पीने आता हो गुरमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मंग मंग खसम दराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जड़ वैरी नानका जे बुद्धे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे दूजी कार है लग्या फिर जोनी पावे नाम रत्या नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब तलाइए हर नाम समावे सतगुर सेवा सफल है सेवे है फल पावे। श्लोक महला दूजा किसी कोई कोई मंज निमाणी तू क्यों ना मरी जय रोए जा लग चितना आवई। महला दूजा जा सुख पास रावे हो दुख भी संभालो नानक कह सियाणी क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी। हों क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंक सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छाई नानक वे प्रभाव है तिस तिल ना कमाई। राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न ना कभू लीना राम ना जपो कवन मत लागे मर जाए वे को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख करके कुटुंब जीवाया मरती बार इक्सर दुख पाया कंठ गहन तब करण पुकारा कह कबीर आगे ते ना समारा। सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रैन गई मत दिन भी जाए

न पानी हंस चलिया काया कुमलानी क्वार कन्या जैसे कर सिगारा क्यों रलिया माने बाज बतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सियानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तै खटिया कहां गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगे का आया रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी लेओ निबेर आज की राती किछ भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जा को हर रंग लागा तन तन सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया तया कराया कहो कबीर तेई नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी एक ना खाक समाया बावरे ते ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहाओ तब लग प्राणी तिसे सरेवो जब लग कट में सासा जे कट जाए ता पाऊ ना जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान कजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर के पुकारिया तिन्हो लिया उबारी रहाओ नौ दाडी दस नु सवतावे रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला ले ही बेहतर कर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम न काई संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाओ विवेको राग सूही बाणी श्री रविदास जियो की इको ओंकार सतगुर प्रसाद सह की सार सुहागन जाने अज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे नांतर राखे अवरा देख ना सुने अपाखे सो खत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई रहो दुखी दुहागन दो पख ही नी जिन ना निरंतर पगत ना कीनी पुर सलात का पंख दुहेला संग न साथी गमन इकेला दुखिया दर्दवंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानू त्यों करगत मेरी सूही जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूंच रहन फिर नाही संग चलत है हम भी चलना दूर गगन से ऊपर मरना क्या तू सोया जाके आना तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे सब कट पीतर हाथ चलावे कर बंदगी छाड़ मैं मेरा हृदय नाम सवार सवेरा जन्म सिरानो पंथ ना सवारा सांझ परी दहज संध्यारा कह रविदास निदान दीवाने चेतस नाही दुनिया फनखाने सोही ऊंचे मंदर साल रसोई एक करी फुन रह न होई तिहु तन ऐसा जैसे काश की ताटी जल गयो काश रल गयो।

रहा पाई बंद कुतंब सहेरा कोई भी लागे काट सवेरा कर की नार उन्हें तन लागी ओ तो पूत पूत कर पागी कह रविदास सब जग लूटिया हम तो एक राम कह छूटिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

जो किछ होआ सब किछ तुझते तेरी सब सुनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चकराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथ ना जाई जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई केते कुकर हो बेगाना औका स्तन पाई भगत हीन नाम।

एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म नावा। मन बेदया दयाल से थी मेरी माए, कौन जाने पीर पराए, हम ना ही चिंत पराए रहाओ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल फल मैयल पर पुरलीना, कट कट जो तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध।

चैन तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे पान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन दे हम जाचिक तू अलग।

बाप दिसे जात न होए, एक एक को ना ही सौ कोए, करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से माया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहित्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख कर्म खुले बौराने, हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर दिन जीवरा रह न सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा प्रभ विसरे हो मरो दुखाली, सास विरास जतो अपने हर पाली, सब बैराजन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करने क्या कार कमाए, हों में मेट चले गुर शब्द समाए। मन मुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास, जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा, हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर पुतंग सहस्यों, जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहला जन्म गवाया, दूजा पाओ न गई लिव लागण, जिन हर के चरण सारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तें दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दयापत दाता, क्या ए जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझते हुए, ऐसा आख बखाने। गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही न जाई, सत्य आप सवारे। परम पुलाने से मन मुख कहिए, ना उर्वार न पारे, जिसनो नजर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल्य क्यों तोले आ जाए, दूजा होए कौन सो जी पाए, किसते दूजा नाही कोए, तिस दी कीमत किको होए। गुर प्रसाद वसे मन आए, ताको जाने दुबदा जाए। रहाओ आप सराफ कसवटी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए। माया का रूप सब चिस्ते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिस आए, सब सच दिखा लेता सच समाए। आपे लिव पात है आपे, आप बुझाए आपे जाते, आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में एक समाना। सतगुरु परचय हर नाम समाना, जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए, अंदिन लागे सहते आना। रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तिन्हें कोई चाल है, जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे कामा, इक ना कर मैं देवड़े आई, इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा खाद बनाया पूरे, देखो एक समाना, इस प्रपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को करो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माए समाना, ए बाणी जो जियो जाने, इस
अंतर रवे हर नामा रहाओ। चौ जुगा का हुन वेड़ा नर मनुखा नो एक निधान, जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है, कल में कीरत हर नामा, जुग जुग आपको अपना कर्म है।

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नाम के सगलावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला, ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे तिस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे, कर कृपा मोह मार्ग पावो, साथ संगत के अंचल लावो, क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार, रहाओ पवन चुलारे माया दे, हर के पगत सदा फिर से, हर शोक से रहे निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड माया सर्प पुयंगा, हूं मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिगार करे नहीं पावे, जहां होए कृपाल संग गुरु मिलावे, हूं फिरों उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर कुसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख सही निहाल, जिन चाखिया तिस आया साध, ज्यो गूंगा मन में विस्माद, अनद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्प वेव, तरत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम से आए, रहाओ सबनी थाने रवे आप, आज जुगा जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने मूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे, पार ब्रह्म प्रभ कह रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रपाले, बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोय अनाथ तूरी सहनाई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोय निर्गुण लीजे लड़ लाए, रहाओ प्रभु चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै सन सदा प्रभु दसे, प्रभु का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभु चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम उतार, चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत, मंथन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कह कर गावना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्यान का बिरथियां प्यारे, राखन को तुम एक, रहा सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता, सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा, नाम की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखन पावा, वड पागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिना वासो, अमृत नाम अरादिए निर्मल, मने होए प्रगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जम की काने,
तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। पूछ अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पारू पारे, नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल मेला पंजवा दिखे बन फीका त्याग री सकिए नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुड़ गई सगली सुखी ना होत जियो। मान महत ना सकती पाई सादा दासी थियो, नानक से दशोभा बनते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित क्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस ओगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया, तन तन हर साधन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड पागणी सखिए संता संग समाये, कह दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाये। कह जन्म ना मरण ना आन जाना नेचल सरणी पाये, प्रेम बिचो न मोह व्यापे नानक हर एक से आये। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुहाये, से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाये। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए, नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा को सतगुरु प्रसाद। एक रूप सगलो पासारा आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जप जप जाइए तप दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभु सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आप उपावन आप सुधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना, आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल न जाई चलना, आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप लिखना, आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल महला पंजवा फूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे

बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकर सतगुरु निस्तारा। बिलावल महला पंजवा। तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन। रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मंत्रिक ताना हर गुण गाया, देहो परत प्रबं कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरा वड पागी पाये, मिल साधु हर नाम त्याये, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभु कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा। गुर का शब्द

साव संग्राम लिव लागी मत पत तन सुख सहज आनंदा एक निमख न विसरो परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास तनेरी अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा मोहे निर्गुण सब गुण बिहुना दया तार अपना कर लीना मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभ कर मैं आया रहा भगत वचल पैका तुम्हारे संसार सागर अब उतरे पारे पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया साध संग प्रगटे नारायण नानक दास सब दूख पलायन। बिलावल महला पंजवा कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा प्रभ अविनाशी अलख अपेवा गुण बेअंत प्रभ जहर गंभीरे ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे तू अपरम कर ठाकुर मेरे रहाओ एकत बिन नाही को दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा आपको कछु न होवत पाई जिस प्रभ देवे सो नाम पाई कहो नानक जो जन सब पाया गुण निदान सब तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा मात गर्भ में हाथ दे राखिया हर रस छोड़ बिखिया फल चाखिया तज गोबिंद सब छोड़ जंजाल जब जम आए सिंगारे मूड़े तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया कर्म हार एक निमक न जापिया महा मोह अंधकूप परया पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया वड्डे पाग सब कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंदो पाई नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई सुख सहज आनंद कणे गुरपूरा पूरी जाकी बाणे अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल संजाम करे प्रभ आपे ऐ मनोरथ सो प्रभ जापे हर कर्म काम मोक्ष का दाता पूरी तई सिमर सिमर विदाता सात संग नाम करंग मान्या कर आया पूरे गुरियाण्या। बिलावल महला पंजवा सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे नर सुवार सातक नर थीवे राम नाम हुआ रखवारा चक मारो सातक बेचारा निंदा कर कर पचे कनेरे निरपट फास गले सिर पैरे कहो नानक जपे जन नाम ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दो पदे

रहा हो। ऐसी कृपा करो परम मेरे, हर नानक बिसरना साहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अटक कथा अमृत प्रभ बानी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांस पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किल विक्षवना से। अनुज करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी प्यारी सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल। दिन दिन छिजत विकार करत, औध फाही फाथा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा विकम सागर अत पारी। उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी।

जियो पिंड सब तुमरा माल, काम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभु सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया, सात जना होए कृपाला दिखे सब परवारया, कार्य सतगुरु आप सवारया, वड्डी आरजा हर गोविंद की, सुख मंगल कल्याण विचारया रहा, वन त्रिण त्रिभुवन हरिया होए, सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए, पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का तैसो काल रहा, साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू तै जंजाल, आपे सतगुर आपे प्रपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, हम दिन कीर्तन हर गुणगान, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो मेरे रहा, कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया रहा, राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माह त्याई, नानक गुरु पूरे सहनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आगे ही मारे करतार, नानक दास ताकी सरनाई, जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सब ले गए, बिन से ते रोग पार, ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग रहाओ, सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग, गुण गावो नित राम के ए अवखद जोग, आए बसो पर देश में ए पले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल राव, अहं बुद्ध को बिन सना ए पुर की टाल, बहु जोनी जन्मे मरे बिखिया विकराल, सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल, सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण चीन रहाओ, जय जय कार जगत में लोचे सब जिया, सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु कछ बिघन न थिया, जा का अंग दयाल प्रभु ताके सब दास, सदा सदा वडियाया नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौक दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया, ज्यो बालू कर बार, बिन सत बार ना ला गई ज्यो कागद बूंदार, सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए कर बार रहाओ, जैसा सुखना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लगे गवार, कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल से सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार। बिलावल महला पंजवा। लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो, जो प्रभ जियो दयाल होए तो पंक्ति लागो, लप रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो रहाओ, करो बेनती अत कनी ए जियो हो मागो, अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो, पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो, हृदय प्रवास प्रगट कया निस्बासर जागो।

हरण सुहागन आया जिस मत तक पागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिसको लगा जिस केवड़ पागा, मैला कदे न हो वही न लागे दागा। प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए, सह समाना पीतरे छोड़िया न जाए रहा। जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्द तेरा पार जम गुण लिख तेरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल मेला पंजवा, राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे, सेवा कछु न जानो नीच मूर्ख हारे। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे रहाओ। हम अवगुण करें असंख्य नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त किनारे, लाज परे तेरे दान से नह चित कस मारे। तुझते बाहर किछ नहीं पाव का तिनहारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगध उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय, जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाय। कही है काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हम रहाओ। जो तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा, नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा, मृत हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अकागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे रहाओ। कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी। दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा।

Notice of her Dham Deepa. Singh Bilai Ho Gayo Trin Mir Dikhita Sram Karte Dham Aad Ko Te Ganit Nita Kaman Vadhai Keh Sako Beant Gunita Kar Kirpa Moe Naam Deho Nanak Dar Srita Bilawal Mehla Panjwa अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध लपट कपट गृह विद्या मिथ्या विख्याद ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद राज मिलक तन जोगना नाम बिन बाद रहाओ रूप तूप सोगंधता कापर पोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद बिलावल महला पंजवा चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पाए उद्यान में गुर दसे तेत

हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ। पंछ चोर आ गए पगे जब साथ संगेत पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत नेचल आसन मिटी चिंत माही डोलेत परम पुलावा मिट गया प्रत्ये खतनेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया साथ संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब काम मिटे गत कई हमारी जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओ आ दिन बलिहारी तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी रहाओ। एक छदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी सगल रेन ए मन पया बिनसी अपदारी निंद चिंद पर दूखना ए खिन में जारी दया मया अर निकट पेख नाही दूरारी तन मन शीतल पय अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल रहाओ। जगत उदाहरण साध प्रभु तिन लागो पाल मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल उपस्यान कछ नहीं नाही कछ काल परम पैरा को मोहते काटो जमजाल बिनो करो करुणा पते पिता पुत पाल

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छर जाए, तुम्हारी कृपा से छूटी है बिनसे अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर, जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जब तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली, सब किछ तुम ते मांगना वड़।

राज मिलक सुखबारियां अग्नि महजाल संत जना का छोरा तिस चरणी लाग माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान गृह साकत छत्ती प्रकार के बिकु समान भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरते पत खोई साकत स्यो मुख जोरे है अदवी चो टूटे हर जन की सेवा जो करे इत ऊते छूटे सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई दर्शन पेट साधता नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रवणी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश तर हर नाम से आवो कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो संत जना की रेणका ले माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास न विसरे अनपते न तावो सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो सत संतोष दया करम शिगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब ने प्रगताया जिस जन हुआ साध संग तिस पेटे हर गाया ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ शरण परे की रास्ता नाही सहसाया कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभु सब करे कराया पथित पुनीत कणी करे ठाकुर बिरदाया मत फूलो मानस जन्माया परमाया नानक तिस पत राक्षी जो प्रभ कहराया बिलावल मेला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनिक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया के रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत जुलम करे हे छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे जिन अनिक एक बहुरंग किए है होशी एहे कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे दास दासन को दासरा नानक कर ले हे बिलावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अनास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है करनहार जो कर रहा साई वडे आई गुरपूर है उपदेशिया सुख समर जाई चिंत अंदेशा गणत ताज जन हुकम पछाता न बिन सह में छोड़ जाए।

देहाते, ओए हमारे साजना हम उनकी देन, जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्वला लिखिया मिला अब आए, बस संग हर साध कै पूरन आसा।

कीमत कहीं ना जाई है ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरै नाम।

बार जाओ लख बेरिया दर्श देख जीवावो, करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध कह बीजन टोलावो रहाओ। अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, कोआ रस में सांप तृप्त होए बिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा, तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी रहाओ। अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सुलभ क्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा, बंधन काटे आप प्रभु हो कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नदर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग रहा। औषध हर का नाम है जित रोग न जाते, साध संग मन तन हित है फिर दुख न जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकी दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार। चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव, जा तो कृपा करो प्रभु ता तो लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभु परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, चित पाई अनद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जा गया तोथे अब समाद की अमृत तृप्ता स्या ताका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर पगता का आस

पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ। संता एक प्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत वचन नानक कहे प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पहु नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए।

करता करे काम को काटे, कीरी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रविय हर मृत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल मेला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन के सुपना भला बसिए प्रभ संग रहाओ, वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत्व ठाकुर अविनाश, ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर, सो अंतर सो बाहर।

परम अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार। भगत आराधे एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। स्वर्ण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लागता गुर कै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। तोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस अमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसे, संत प्रसाद पेटे पर।

और उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हारे राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया की नाप नया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापिया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय है, किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है, मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे, राम नाम जो जन जपे हम जिन सब जागे, पंथ मंत्र नह जोई तित चाप न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन रस

को कुछ नहीं करना, दुख ना लागे कदे तुद, पार ब्रह्म सितारे जम कंकर नेड़ ना आवे, गुरसिख प्यारे रहाओ। करण कारण समरथ है किस बिन नहीं होर, नानक प्रभु शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभु अपना, नाथा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साथ संग, ताके बहुर ना पाओ। बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुन गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद तुन इह बनियो सुआओ, नानक प्रभु सो प्रसन्न भए बाँचत फल पाओ। बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नाश, चरण कमल का आसरा प्रभु प्रभु गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कर सास रहाओ। मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाय सब पला।

पार। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्याद अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणक हर सब जी जिस हाथ, नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राजा होए कृपाल, मार्ग संत बताया।

शीतल भये राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जाका बड़ प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ मिट गया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बारे रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सारे। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेत नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग प्राण।

पर कृपा अपने प्रभु की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभु के काम क्रोध स्तंभ के जात त्रिपद अघाये पेट प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मेरा पंजवा राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तै बिलसे कहु नानक ठाकुर प्रताप बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सब गुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगे परवान राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनसो अंधकार तिहि मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो कह न जाए वड्याई मगन पे उहां संग माचे ओत पोत लपटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अहं बुद्ध नहीं पोरा ऊंचन ऊंच बीच ना खींचा हों तेरा तू मोरा एक अंकार एक पसारा एक कै अपर अपारा एक विस्थिरन एक संपूरन एक कै प्राण धारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा अंत ना अंता सदा बिरंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा बिलावल महला पंजवा बिन हर काम ना आवत है जासु राच माच तुम लागे ओ मोहनी मोहावत है रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोट छिने में जावत है उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगोरी खावत है त्रिन को मंदर साज संवारो पावक तने जरावत है ऐसे गर में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है पंच दूत मूड पर खाडे केस दहे से रावत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत है जाल पसार चोग विस्थारी पंखी ज्यो पहावत है कहो नानक बंधन कातन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान संबोली रहाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली त्रै मुख लागो जो वड पागो सुहाग हमारो कतो न डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली।

गोविंद गोविंद मई, जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा, पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल साथ दयाल दई, काम करो तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई, सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते इह मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवां, क्या हम जी जंत बेचारे, वरन ना साते एक रुमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई, क्या कथी है किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई रहाओ, जह महाप्यान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तू है सहाई, शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवां, अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमक जताई है, अचरज सुनियो प्रापक पेटले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है रहाओ, जो मानुख मानुख की सेवा, को किसकी लई लई फुन जाई है, नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवां, संत शरण संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू, गुर पूरे मेरी उल्ट करी, देखियो मोहन सब कै संगे, पूर्ण न काहू सगल करी, पूरन पूर रहो कृपा निध, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवां, मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

ज्यो कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु तुलाया, काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरी है। नानका राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करें करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परे प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे का दे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहा, त्यानप ते सब पई स्यानप। प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोसे, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय मैं दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहाओ, निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा। प्रभु मेरे का बड़ प्रताप, सिमर सिमर सिमर सुख पा।

महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभु नाम जरा मरा कछ दुख न व्याप है आके दर्द है पूरन काम रहा आप त्याग परिय हित करनी गुरते पाये हो निधान जन्म मरण की कटिए फांसी साची दर्गे का निशान जो तुम करो सोई फल मानो मन से छूटे सगल गुमान कहो नानक पाकी शरण आई जाका किया सगल जहान बिलावल महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आही हर गुण गावत पर उपकार नित किस रसना का मोल किस नाही रहा कुल समूह उदरे छिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पर आही संत सेवक भगत हर काके नानक मन लागे है ताही बिलावल महला पंजवा तीरो देख तुम्हारे रंगा तू ही स्वामी अंतर जामी तू ही बसे साज कै संगा रहाओ छिन में थाप निवाजे ठाकुर नीच कीच तो कहे रा जंगा कभू न बिसरहिए मोरे ते नानक दास एही दान मंगा बिलावल महला पंजवा अचुत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्थ रखो हर आगे सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखे अपने को किसनो लगे न काची बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्व सो संत जना तन माल नानक जाचित दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिलेरवाल बिलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन भय साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास कहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाथा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश है तुह पदार्थ बड काज नहे कर कृपा पूरन प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण रात सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे सुलही होए मुआ ना पात रहा काट कुठार खसम सिर काटिया छिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चित

आपे आप वर्त स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राख प्रभ मेरे को वड़ प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

पूरे हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे कारज हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाए जन्म मरण के मिटे बिसूरे प्रम पै तरे छुटे पै जम के कट कट एक रहा पर पूरे नाम शरण परयो दुख पंजन अंतर बाहर के खजूरे बिलावन महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कभू ना हो वो दृष्ट गोचर जीते संग बसे।

जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रवापे। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, करत विकार निष्कोर पया रहाओ, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नह परी दया।

बिलावल महला पंजवा। अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चक मारत कुशल पया मेरे पाई नीत रहा गई विराद उपाद सब नासी अंगीकार कियो करकार सांस सुख और अनद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रव तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने

को शब्द मेरे ही रे बात है। हर नामा मन संग करो तस्कर पंच निवारो ठाकुर सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई फल माने पावन दुबदा दूर करो। नानक के प्रभु तुम ही दाते संत संग ले मोहे उद्रो। मिलावल मेला पंजवा ऐसी दीख्या जंसो मंगा

पंजवा आगे पाछे कुशल पया गुरपूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु की नी मया रहा मंथन रव रहा हर प्रीतम

सांत सहज अनंत गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगुण प्रभु कछ न विचार्यो, कर कृपा अपना कर लिया। अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी, नानक उचरे हर।

नहीं आवत फिरत मद मावत दिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अध खंडन नानक जीवत दर्श।

अनक भगत अनक जन तारे सुमरह अनक मुनि अंगले टिक निरकन तन पायो प्रभ नानक अनक

फूल जियो अल मकरंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक कह हर लाहे अन से टूटी है रिख से छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मेला नावा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पाए जी जानो।

रहा है। तू नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही रहाओ, तीर्थ करे व्रत सुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं जा को

कोई, कत कत बाद करे दुख होई, कत सहने ते रहे न कोई, दिन रस राते मुक्त न होई, ज्ञान ध्यान सब गुरते होई, साची रहत साचा मन सोई, मन मुख कथनी है पर रहत न होई, नामो पूले थाओ न कोई, मन माया बंदे हो सरजाल, कट कट ब्या

नानक कहे अवर नहीं कोए। बिलावल मेला पहला मन का कहे आ मन सा करे इहो मन पुन पाप कुचरे माया मद माके तृप्त ना आवे तृप्त मुक्त मन सा।

दूजी दुर्मत दर्द न जाए, छूटे गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल माला, अंतर क्रोध पढ़े नाटशाला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच्छ नीच चंडाला, गुर के मुँह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया आये।

आप न बुझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपे।

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृपत न पैया, परम बैराग नित नित हर त्याए।

शास्त्र नाम दृढ़ैया हों में जाए ता निर्मल होवे गुरुमुख परचे परम पद पैया इहो जग वरण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत बजाए वाजे जित पावे तित राहे चलैया। बिरावल मेला चौथा गुरुमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया।

प्रसादी मैं अकथ कथैया। मनमुख माया मोह व्यापे त्यों मन तृष्णा जल तिथैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। त्यों मन नाचे सतगुर आगे अनहद शब्द।

मन मांगे रिद सिद चेतक चेत कैया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद कैया अंडज जेरज सेत जुत पुज

चाहिया मन सन कार दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृद अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक कार दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचन ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे पैया। सीमा सिदार करे प्रभु खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभु मेरा हम तिस आगे जियो कट कट।

कन्हैया सतगुरु दया करे प्रभु मिले, मैं तिस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभु देखे बिन नींद न कहिया। वैदक नाटके देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हों खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, जो बिन अमले अमली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभु केरी, तिन अवर न पावे।

एको प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख पर मैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभ आए मिले छिनटील न पैया कर कर क्रिया चार विधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल को।

चोटा खाए, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पखंड कीने मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़,

पंचपूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला एक परम पूखे मोह प्यासे एक रस चाखे सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दर्शन।

तिस में मनुआ रेहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

दादर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौदस चौथे थावे ले पावे, राजस तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए।

गुरख शब्द हर रया समाए, मंगल माया मोह उपाया, आपके सिर सिर तंदे लाया, आप बुझाए सोई बूझे, गुरख शब्द दर कर सूझे, प्रेम भगत करे निवलाए, हो मैं ममता शब्द जलाए।

आप गवाई नानक नाम रखो उधार देवन हारे को जयकार वीर वार वीर परम पुलाए प्रेत भूत सब दूजे लाए।

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी सात लिवलाए। सत गुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सत लिव लागी, तेरे रंग राते सह सुबाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर सेवै सो जन बूझे, हमें मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वर्ते अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर

पाए नानक गुरमुख वेखै हदूर मेरा प्रभ हदरया परपूर। एक सेवक एक परम पुलाए आपे करे हर आप कराए एको वर्तै अवर न कोए मन रोष की जय जे दूजा होए सतगुर सेवे करनी सारी दर साचे साचे विचारी। सिखी वार सब सब सुहाए सतगुर सेवे ता फल पाए सिखी वार सब आवे जाए गुर शब्द ने चले सदा सच समाए सिखी वार ता जा सच रात।

अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की सुन गुर विचार, बहुते पेख करें पेख तारी, पव पव पर मैं काची सारी, ऐसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुरु सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सोए, एक कितनी वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंग गुबार, कितनी वार सेवे मुग्द गवार, नानक गुरमुख बूजे सोजी पाए, इकत नाम सदा रहा समाए, बिलावल मेला पहला संत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंड नवे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब श्रीगारिया कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया, तन पाए पगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर देख फिर साधारिया, सच नवेल लड़िए जोबन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग बासी मैं पगत हर की पावे, अगाध बोध अकप कथिये सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया, श्री तर मोहड़ी तिर संकूती राम, गुर कह पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगसूती संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, साथ साथ निरंजनो शब्द ज्योत जगाए दीपक, नानका पौ पंजनो, ज्योत सबाएड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट रव रहा अलख अतारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है, हो मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है, दर जाए दर्शन करी पाने तार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया, बिलावल मेला पहला, मैं मन चाऊ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब गच्चो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोचिए, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हट ना जाना नानका सच गह रहे, पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर फूटड़िए पिरम जगाए राम, नवहान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया, जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकत कहानी राम, अकत कहानी पद निर्बानी को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन सो जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूर रहा सर्व ठाई नानका उर्धारिया, महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार बीजय शब्द सीजय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं कान तकिया तेरो साच सूचा सदा नानक,
गुर शब्द चगर निबेरो छंत बिलावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन कुख समाना राम गुर कुछ है हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम गुरमुख मिल सुहागनी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम भगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम बिन हर नाम ना जीन दे जो जल बिन नीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड पाग गुर पूरे खा लिया नानक हर लिवलाग छंत। मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा गे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुर पूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम जन नानक नाम विदसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुर्द मिलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम जन नानक नाम।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिए मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। बिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभु ते कर बिनंती मिले हर जस ला बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभु अगम अथाह सा।

आनंद अंगुल बजे बाजे अहमत मन की त्यागी बिन वंश नानक शरण स्वामी संत संग लीलागे बिलावल मेला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे बाजे दिन स्रे उमाहा तह रोग सोग ना दुख दिया तह जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिन वंश नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण आधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पगत फगौरी पाए मोह है अंत कथु न पावे बिन वंश नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेक गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साफी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोक जनाया मलन मोह विकार नाके दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिन वंश नानक पई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिन वंश नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

सगल जा को करना पत दक्षिण लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मुल मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोए चात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते कीत चित हो मित अंगारे जो आस चतवी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया तिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कवन रसना गुण।

सुंदर छाप दयाल प्रभ सर्व सुखानिद पियो सुख सागर प्रभ केते है नानक सुखी हो तिहु जियो। संत सुख सागर प्रभ पाइए जब होवे पागो राम मानन मान वंजाइए हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचात्री गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम। सो प्रभ तज तत लागिए जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती गुरजन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरे बल गये दुचारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम ब्रह्म मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टाक्रम पसमा राम। लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभु शरणागति जप अनक तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम। बड़ पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम। बहा पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको प्रभु अंतर जामी राम। सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम। गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम। नान

हर उत्तम हर प्रभ गाव्या कर नाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उचरै हर हर हर उरलि लाग सब तन मन हरिया होया मन छिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन जान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमक करी मुख लाग महला तीजा बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे नाम राग नाद सब सोने जान लागे सहज ज्ञान राग नाद छोड़ हर सेविए ता दरगे पाइए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिए चूके मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगम है सब तुझ उपाया तू आपे आप वर्तला सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से व्या तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुख खाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने खाए न कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारी है विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक क्यों लिलाए जन्म मरण दुख कटी है सच्चे रहे समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलने सतगुरु पाए सत संगति वह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विचार आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद कर हर भगता का मेली सर्वत सौ निशुल जन टंग तर हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुद अपर कोई न सके

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिवलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना की किया, सबल ना लगो पाओ, हों मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। पौड़ी सब वडियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है, जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है, गुहज गल जीव की चीक है, सब गुरु पास ता सर्व सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे सब दुख ले जाइए, जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए। श्लोक महला तीजा सतगुरु ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए, सतगुरु का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए, गुरु का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए, हर रस की संतोष हुआ सत रसिया मन आए, सच से आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दैज पथरिया गुर कहते सुवाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छपाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जहाँ को नदर करे, मानस के देवते पे सच्ची पदक जिस दे, हों में मार मिलायन गुर कह शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे। पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई, निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई, क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यो बने आई, ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई, सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा त्रिज ए आशा दूजे पाव की जो मोह माया चित लाए, हर सुख पल्लर त्यागया नाम विसार दुख पाए, मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध न होनी अंत गया पछताए, जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए, नाम रते जन सदा सुख पाए, जन नानक तिन मरे।

जो कुछ हर करावे सो ओय करें, सब हर के अर्थिये। सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुरु के वल है, तुम सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गो लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वड्याई देखो हर संतो, जिन विचो काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा, अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे। दुख विस्कार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए, कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गास्या, तिमर अज्ञान अंधेर छुपाया, मैला तीजा। मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनत नानक सो जन पाई, सतगुरु सेवो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दूख व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे, तो मनमुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा, होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे, सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागाती किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या, सदा वे परवाओ। श्लोक महला तीजा। इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अंगिन नाम के आया, दिखिया माए उदास है, हो मैं शब्द जलाया, आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया, सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां देव त्रै गुण पुल्ले, हो मैं मोह वधाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले, दूजे पाए चितलाया।

अवर न कोय गुरुमुख अंतर मन वस सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्हें गुरुमुख हर नाम तन ना खटे हो से देवालिये जुग माहे। कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करें अपनी प्रतीत फोन सगवादी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करें सो तन चुगली हस ना आवे। कोई पावे तिथे जाए गुरुमुख सेवक पाए। हर तन मिले तुच्छो कर्महीन ले न सके। होर्थ है देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला तीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विच्चो जाए। जो किस हुए सो सहजे हुए कहना किसु ना जाए। नानक तिनका आख्या

मीठा बोले अमृत बाणी, अंधन हर गुण गाओ, निज कर वासा सदा सोंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी, सो गुर हर तन हर पासो देवाया, जो कुसै त्यो दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले, अक कोई क्यों देवाए इहो हर तन, जोर कीते किसे नाल ना जाए वंडाया, जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए, तिस हर तन की वंड हत आवे, जिसनो करते तुर लिख पाया, इस हर तन का कोई शरीक नाही, किसे का खत नाही, किसे के सीव बन्ने रोल नाही, जे को हर तन की वकीली करे, किसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया, हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना।

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत संभारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन, हों मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मती, हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत परम लुटाया, विक्षो रचै रचन, दुष्टा सेती तिरहड़ी, जंक्षो वाद करन, नानक साकत नरक में जम बजे।

ताने तिस सात गिरास सदा मन वसै जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभु वसै हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से तिस कौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु तो परमेश्वर सुनिया कोई वर

सूदे सूदे रे चलो तुम नतर को तक्का दे गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सबू जम ले जई है रे मानस बपरा मूसा कीनो मीस बिलैया खई है रे तनमंता अर निल तन मन ही पापी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत बौरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंगराता। बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पौजल निरपारी राख राख मेरे बीचला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बात ना तजी न जाई अनित जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहू कबीर मेरे माधवा तू सर्व्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी। बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे हर हर रस लपयो हमारे कुल कौने राम के हो जबकि माला लई निकूते तब के सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए यह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज दिन राखी हरनाशक नख बिद्रयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लय उदरयो। बिलावल को हर समान नहीं राजा एक ऊपर सब विचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सो सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसार परम क्यों को रूप है लाद निवाजा। बिलावल राख लो हम ते बिगरी सील कर्म जब भगत न कीनी हो अभिमान पेड़ पगरी रहाओ अमर जान संची ए काया ए लिखिया का की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोए साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए दिन की सुनियो मत कालो जम की खबरी। बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार कुछ बिल सुर्त करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदार

संस्था आधारी क्रम से पाए पवे तेज तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पद बवरे राव जिन तू जाचे सो त्रिगुण जोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन का करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या खेती क्या लेवा दई परपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप रे मन हर पाजे परम तजो जग जीवन राम रहाओ आवश्यक दी सही न दी सह जात जय उपजय दिन सह तही जैसे पुरवन पात मुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवक सुन समान्या गुर सासी जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माय त्यागी आप के जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना।

तब ए मत जाओ सब में पेखे कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नर जा मन तोले देव जय ओ जाए तई सुख पावे माया तासना चोले देव कह कबीर मेरा मन।

बिलावल जे कुल साध बैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहा ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री।

तन पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन पिया सार रस तजे आन रस, होए रस मगन डारे दिखोए। पंडित सूर छत्रपत राजा, तगत बराबर और न कोए, जैसे कुरैन पात रहे जल समीप।

था कर पहला जी मन चित आस रखे हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए हर जाने सब किस जो जीवर तय प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाई मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साले फल आस सब बिरथी जाय रहा जो दिसे माया मोह कुटम सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई इनके कुछ हाथ नहीं कहा करें ए बकुड़े इनका वाहया कछ ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटम सब चढ़ाई जो कुछ आस

मैं चूट दिल सब जाए मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब खाए पाए आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराए कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए जन नानक की आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताए गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है जो खुन में किलिक सब करे बिनासा जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा मेरे मन हर सेवियो सुख दाता स्वामी जिस सेवे है सब दुख लहासा मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा जह जाइए तह नार

अपनी दिशा बहुत बहुत कदाचार, अपनी दिशा कहूँ हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी दिशा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा। जो संसारे के कुटुंब मित्र पाई दी से मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मिलासा। जित दिन उनका स्वाव हो ना आवे, तित दिन नेड़े को ना चुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुल उपकरे दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जातो, तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो, इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा, हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर, सांप शीतल मन अपना। जैसे सतत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहाँ कहाँ तुझ राख है सब थाई। सो ऐसा प्रभु सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया, मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो, ओ उत्तम संत पयो बद बडना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई। इक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक को हर दान इक दीजे, नित बसे हृदय हरि मुहे चरना।

हर अविनाशी सदा चिर निर्चल तुस मेरे मन पद परवान। मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर महल पावे गुर बचनी, किस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ई है, हर दिन को मार जीवाल न साथ है, ता मेरे मन कायत कड़ई है। रहाओ हर पर पंच किया सब करते, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो किस पासों मन क्या चोरई है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैव सब चित सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौन महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यो त्रिखावंत दिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजाओ, हर दर्शन सा

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जातविकर्ता, निर्गुणकर्ता, सर्गुणकर्ता, गुरु प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भायले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गायले, मन समझ छोड़ अवायले, अपने रहन को ठोर न पावे, काए पर कह जायले, रहाओ, ज्यो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग पड़े कुटुंब आयले, ज्यो पंखी कत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चायले, जैसे मीन रसन साध बिनस्यो।

भंडार सगल कथा देव है आधार सतपुरुष जाको है नाओ मिटे कोट अग्निमुख जस गाओ बाल सिखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत कौन महला पंजवा नाम संग सीनो व्योहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही चित कीनी ओट नाम जपत मिटे पाप कोट रास दी हर एको नाम मन का इष्ट।

सगल पूछे को कर दान, गर्भ कोर में राखन हार, किस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए, कट अवकट गत कट है सहाय, रहाओ रंक राव जाके एक समान, कीट हस्त सगल पुराण, दियो पूछ ना मसलत करे, जो किस करे सो आपे करे, जा का अंत ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग

काल नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गौण महला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिख हो है नास, जाके संग हृदय प्रदास। से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत रहाओ। जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पावन से, जाके कीरत निर्मल सार, जाके रेन बांछे संसार। कोट पतित जाके संग उदार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुर के शब्द मंत्र मनमान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत को परम पुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार रहा, पुले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्द मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाये पाए, गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ, गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक देह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए, कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणी ताका मन लाग, गौंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अभियो, सर्व पूज चरण गुर सेओ, गुर बिना

रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम।

ताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लीलाए राम राम जप निर्मल भय जन्म जन्म के किल बिछ गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत